0: आपने तो दीदी को एकदम धो डाला।
1: इसमें जनता का जीत है, मोदी जी का जीत है।
2: आज के की खावे झालमुड़ी ना माचर झोल।
0: How will you celebrate?
1: झालमुड़ी माचर झोल विद रसगुल्ला।
3: You know, you remember, you promised me that you will come to Kabini and do an interview with me. You like going to the forest?
4: This is a declaration of our state that to the entire country that our Kerala is secular.
5: ये विजय बंगाल की जनता के विशेष करके मातृशक्ति की।
0: One clip that went most viral. Was the non-interview. Cruz spent some time with him. We have these whistles out for you, and the whistles are for the fact that you got the poll right, which is quite fantastic.
6: We saw you campaigning, ma'am, for the RG Kaur victim's mother as well. You know, that was a telling moment. Do you believe that that incident in some ways was a tipping point?
7: I think that Shiv is not, was not the only incident.
8: Tabhi puran khule তুই মুখ ফুটে তোর মনের কথা একলা বলো রে যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে
9: ভরসা অন মোদি জি অ্যান এক্সট্রাঅর্ডিনারি ম্যানেজমেন্ট অ্যান অ্যাসিওরেন্স অফ কারেজ গিভেন বাই অমিত শাহ জি টু অল দ্য পিপল উই আর উইথ ইউ
10: ইলিগাল মাইগ্রেন্ট ইয়ে বাংলাদেশে ঘুসপিটিয়া কে লিয়ে ইয়ে দোনো পার্টি প্রতিবাদ হয় देश की जनता के लिए नहीं, इसलिए देश के जनता ने उसको नाकारा।

0: भय से भरोसा इज द ट्रांजिशन विच इज हैपनिंग नाउ, भय से मुक्ति इज द विक्ट्री बीइंग डिपिक्टेड।
1: अब आपकी सरकार ओडिशा और बंगाल दोनों में है तो

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
3: इकोनॉमी बिजनेस वर्ल्ड टेक्नोलॉजी नॉइज फिल्टर्ड नंबर्स डिकोडेड इनसाइट्स दैट रीवायर योर वर्ल्ड व्यू फ्रॉम गवर्नेंस टू ग्रोथ वी कनेक्ट द डॉट्स योर डेली एज योर ग्लोबल एडवांटेज इंडिया बिजनेस रिपोर्ट विद मी गौरी द्विवेदी वीक नाइट्स ऑन एनडीटीवी प्रॉफिट।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा,
4: सबका राजा आर्टियोर मसाला।
5: इकोनॉमी बिजनेस वर्ल्ड टेक्नोलॉजी नॉइज फिल्टर्ड नंबर्स डिकोडेड इनसाइट्स दैट रीवायर योर वर्ल्ड व्यू फ्रॉम गवर्नेंस टू ग्रोथ We connect the dots. Your daily edge, your global advantage. India Business Report with me, Gauri Dwivedi, weeknights on NDTV Profit.

0: आप मेयर हैं, आपको नहीं मालूम है?
1: हम पॉलिसी मेकर हैं, एमसी एक्ट में हमको ये बारे में कोई जानकारी नहीं।
2: कोई अगर इलीगल घर बना के रखेगा तो वो तो आज अभिषेक बैनर्जी हो, ममता बैनर्जी हो, जावेद खान के बेटे हो, राजू नौशकर हो या पप्पू सोना, नियम सबके लिए सेम है। अगर आपके पास पेपर है लिया ये पेपर, हम लोग देखेंगे आपका बिल्डिंग लीगल है कि नहीं। लीप्स एंड बाउंस का घर है, आपका पिताजी का घर है अभिषेक बैनर्जी, आपको जवाब देना पड़ेगा क्योंकि आप तो भगवान नहीं है, ना ही आपका बुआ जी भगवान है। तो जो नियम सबके लिए है, पेपर दिखाइए, कुछ नहीं करेंगे, पेपर नहीं दिखाएंगे, सब कुछ करेंगे।
3: वी सी जस्ट आफ्टर द न्यू गवर्नमेंट टुक पावर इन इट्स हैंड, from the media report it came to our notice, at least came to my notice, that Kolkata Municipal Corporation at present being run by the commissioner by himself, and he is blatantly ignoring the legal provision, legal way of operation.
4: And before we wrap this bulletin, I'd like to leave you with these images. In a major boost for Indian Defence Forces, private sector Naib Limited has successfully carried out the firing demonstration of the Suryastra rockets of 150-kilometer and 300-kilometer range. This is in Chandipur in Odisha. The rockets achieved a CEP of 1.5 meters and 2 meters respectively during the firing trials. And this demonstration is part of the procurement order placed by the Indian Army.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
3: द फ्रंट लाइंस ऑफ कारगिल, द फ्यूरी ऑफ ऑपरेशन सिंधु,
4: so many attacks,
3: the chaos and cries of disaster zones, the fighter jet cockpits, and the world's most defining interviews.
4: It's incredible.
3: He has seen history break live, unfiltered. 20,000 hours of live broadcasting.
4: Welcome to Left, Right and Center.
3: Hard facts.
4: War-struck country.
3: Hard questions.
4: In the Ukraine.
3: 30 years of trust.
5: In the Kargil area.
4: North Ukraine. In France. In Italy.
6: At Srinagar.
4: Hi, Mr. France.
7: Vishnu Shom for NDTV.
3: Vishnu Shom. Only on NDTV.
8: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हिट तो है इसकी खास बात।
9: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
10: अरे मेरे राजा।

0: अचीवमेंट हो सकता है क्या? मूडा स्कैम अचीवमेंट हो सकता है क्या? वाल्मीकि बोर्ड का स्कैम अचीवमेंट हो सकता है क्या? अचीवमेंट क्या है?
1: All right, time for us to slip into a short break. More news updates coming up on the other side. Do stay with us.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
2: द फ्रंट लाइंस ऑफ कारगिल, द फ्यूरी ऑफ ऑपरेशन सिंधु,
3: so many attacks,
2: the chaos and cries of disaster zones, to fighter jet cockpits, and the world's most defining interviews.
3: It's incredible.
2: He has seen history break live, unfiltered. 20,000 hours of live broadcasting.
3: Welcome to Left, Right and Center.
2: Hard facts.
3: War struck country.
2: Hard questions.
3: In the Ukraine.
2: 30 years of trust.
4: In the Kargil area.
3: North Ukraine. In France. In Italy.
5: At Srinagar.
3: I am Srinagar.
6: Vishnu Shom for NDTV.
2: Vishnu Shom. Only on NDTV.
7: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
8: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
7: अरे मेरे राजा।

0: Rawat are coming up ahead. A controversy erupts over the Prime Minister's latest video with the Italian Prime Minister. The Congress has hit out over this video. Meanwhile, in Karnataka, once again, a Kissa Kursika is taking place. DK Shivkumar says he will go to Delhi if called. Let's take a look at the headlines we're tracking. The Congress hits out over the latest viral video of Prime Minister Modi and Italian Prime Minister Meloni. Rahul Gandhi says an economic storm is looming over the country. The Prime Minister is giving out toffees, making reels. On the last leg of his international tour, the Prime Minister is in Rome. He gifts a Melody toffee to Italian Prime Minister Meloni in a lighter moment. The duo was seen laughing and enjoying the moment.
1: Prime Minister Modi brought us a gift, a very, very good toffee.
2: Mallory.
0: Even as the Karnataka government has completed 3 years in power, the tussle over the chief minister's position continues to simmer. Will Delhi take a final decision soon? It's 8 days since Noida woman Twisha Sharma was found dead under mysterious circumstances in her husband's home in Bhopal. The husband, lawyer Samar Singh, remains missing as her parents are demanding a second autopsy. And the national capital and adjoining regions reel under intense heat. The IMD has issued a warning. Heatwave conditions will continue over the next few days.
3: Presented by Canara Bank. Together we can.
0: After a video of Prime Minister Modi and Italian counterpart Giorgia Meloni went viral, a political showdown has now erupted over this light-hearted video. The video from Rome shows an informal meeting between the two leaders and the Prime Minister gifting Meloni a packet of Melody toffee. Remember, both leaders together are known on social media as Meloni, so it was a play on that and a light-hearted moment among the many viral visuals that have also emerged from the Prime Minister's Rome visit. However, now a controversy has erupted with Leader of Opposition Rahul Gandhi hitting out at the Prime Minister, saying that an economic storm is brewing over our heads and our Prime Minister is out in Italy handing out sweets. He goes on to say farmers, youth, women, workers and small traders are all in tears, but the Prime Minister is laughing and filming reels while the BJP lot are clapping along. So Rahul Gandhi there hitting out at the Prime Minister over this latest viral video that has emerged. Let's listen in.
4: पता नहीं आपने आज मोदी जी का वीडियो देखा नहीं देखा देखा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वालों ने देखा वो इटली की राष्ट्रपति मेलोनी है उनको नरेंद्र मोदी जी टॉफी खिला रहे हैं रील बनाई है हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री इटली के प्रधानमंत्री को
5: वर्क फ्रॉम होम और खुद करते हैं रोड शो खुद जाते हैं 8,500 करोड़ के हवाई जहाज में विदेश और सुना कोई मेलोडी की टॉफी भी किसी को गिफ्ट करने गए पार्ले मेलोडी अभी देख रहा था हंसी मत सच में हुआ है मजाक नहीं कर रहा हमें भी शुरू में लगता था ये मजाक हो रहा है लेकिन ये सच में हो रहा है क्या मेलोडी वो टॉफी का नाम है भाई हाँ उनको मुझे नहीं मालूम किसको किया टॉफी का नाम बता रहा हूं किसको क्या हमें नहीं मालूम
6: राहुल गांधी विदेशी दौरों पे भी जाते हैं इनके सब और सब कृत्य सिर्फ एक ही बात पे है कि भारत के चुने हुए प्रधानमंत्री को किस तरीके से ये हानि पहुंचाए क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कांग्रेस को पॉलिटिकल पास्ट कर दिया है इसीलिए अब राहुल गांधी एंटी इंडिया फोर्सेस के साथ मिलकर अपने आइडियोलॉजिकल पैटर्न अर्बन नक्सल के डायरेक्शन में अब भारत के लोकतंत्र भारत के चुने हुए प्रधानमंत्री के खिलाफ अपशब्द बोल रहे हैं राहुल गांधी एक खतरनाक व्यक्ति हैं उनकी मंशा भारत के स्टेट के खिलाफ लड़ाई लड़ने की है
7: प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज डन अ ग्रेट डिप्लोमेटिक एफर्ट इन द कंट्रीज ही हैज विजिटेड
2: We have achieved great things for India, for instance.

हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार के 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है। भारत में मौजूद 800 से अधिक इटालियन कंपनीज भारत की ग्रोथ स्टोरी में सक्रिय भागीदार बन रही है। आज आयोजित किया जा रहा बिजनेस फोरम से यह स्पष्ट है कि दोनों देशों के बिजनेस लीडर्स में एक नया उत्साह, नया कॉन्फिडेंस और नया एम्बिशन है। इटली विश्व में डिजाइन और प्रिसिशन के लिए जाना जाता है। भारत की पहचान स्केल, टैलेंट और एफोर्डेबल इनोवेशन के पावर हाउस की है। इसलिए हम डिजाइन एंड डेवलप इन इंडिया एंड इटली एंड डिलीवर फॉर द वर्ल्ड के सिद्धांत पर आगे बढ़ेंगे। फैशन से लेकर फिनटेक तक, लेदर से लेकर लॉजिस्टिक तक, मोबिलिटी से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक, हर क्षेत्र में हम अपनी ताकतों को जोड़कर पूरी मानवता की भलाई के लिए काम करेंगे। इंडिया यू एफटीए के समापन में इटली से मिले सहयोग के लिए मैं प्राइम मिनिस्टर मेलोनी का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं। हम मिलकर इसके जल्द से जल्द इम्प्लीमेंटेशन के लिए काम करेंगे, जिससे बिजनेस कम्युनिटीज इसका पूरा लाभ उठा सके। फ्रेंड्स, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन हमारी पार्टनरशिप का इंजन है। एआई, क्वांटम, स्पेस और सिविल न्यूक्लियर एनर्जी जैसे क्षेत्रों में हमारे सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। दोनों देशों के स्टार्टअप्स, रिसर्च सेंटर्स और उद्योगों को आपस में जोड़ने के लिए हम इंडिया इटली इनोवेशन सेंटर पर काम कर रहे हैं। फ्रेंड्स, रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्रों में करीबी सहयोग हमारे गहरे आपसी विश्वास का प्रतीक है। हमारी सेनाओं के साथ साथ दोनों देशों के रक्षा उद्योगों के बीच भी सहयोग बढ़ रहा है। हमारे डिफेंस इंडस्ट्रियल रोडमैप से को डेवलपमेंट और को प्रोडक्शन का मार्ग प्रशस्त हुआ है। मैरिटाइम पावर्स के रूप में भारत और इटली के बीच कनेक्टिविटी के क्षेत्र में करीबी सहयोग स्वाभाविक है। हम मिलकर शिपिंग, पोर्ट्स मॉडर्नाइजेशन, लॉजिस्टिक्स और ब्लू इकोनॉमी पर काम करेंगे। हमने अपनी विन विन साझेदारी को तीसरे देशों तक ले जाने पर भी चर्चा की। इस दिशा में आगे बढ़ते हुए हम अफ्रीका में ठोस प्रोजेक्ट्स पर काम करने के लिए सहमत हुए। फ्रेंड्स, भारत और इटली एकमत है कि आतंकवाद मानवता के लिए गंभीर चुनौती है। टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ हमारी साझा पहल ने पूरे विश्व के सामने एक महत्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत किया है। भारत और इटली ने यह स्पष्ट संदेश दिया है कि रिस्पॉन्सिबल डेमोक्रेसीज केवल आतंकवाद की निंदा नहीं करती, बल्कि उसके फाइनेंशियल नेटवर्क को तोड़ने के लिए भी ठोस कदम भी उठाती है। यूक्रेन, पश्चिम एशिया तथा अन्य तनावों को लेकर हम लगातार संपर्क में रहे हैं। भारत का मत स्पष्ट है कि सभी समस्याओं का समाधान डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से होना चाहिए। फ्रेंड्स, हमारे ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और पीपल टू पीपल संबंधों की झलक दोनों देशों में
कदम कदम पर दिखाई देती है। इटली में भारतीय कला, योग, आयुर्वेद और खान

0: या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर व मिसली, स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।
1: We at NDTV traveled across the length and breadth of West Bengal

0: या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्म इसलिए स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।
1: Where the software engineer meets the gifted content writer, meets the cool UI UX designer, meets the

0: सिस्टम से सब लोगों ने मिल करके एक बहुत बड़ा फ्रेमवर्क है फ्रेम करके इसको काम किया है। ऐसा लगता है कि इसमें कितने अपराधी शामिल हैं जो बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए हैं। आप ये देखिए कि बगैर लिगेचर के पीएम रिपोर्ट उन्होंने रिलीज़ कर दी, प्लस आप देखिए कि एक व्यक्ति को आपने कैसे उस सेम ग्राउंड्स पर एक व्यक्ति को आपने जो है उसका बेल आउट कैंसिल कर दिया, बेल एंटिसिपेटरी बेल, और एक को ग्रांट कर दिया और वो आदमी को आपने खुला छोड़ दिया टीवी पे और सारी
1: डिफेंस रखने के लिए, अपने डिफेंड करने के लिए, और सह अभियुक्त भी हैं वो। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि पुलिस कह रही है कि सबसे सख्त कानून लगाया गया है डाउरी का, दहेज का, बावजूद इसके उनको एंटिसिपेटरी बेल मिल जाती है। हालांकि मीडिया के दबाव के बाद ये भी बात सामने आई कि बेटे को नहीं मिल पाई, जो कि दोनों के लिए होना चाहिए था, लेकिन ये अदालत का फैसला है इसीलिए इसे मानना होगा। ऐसे में अब जब आप चिट्ठी आपके हाथ में है और पुलिस ने हाथ खड़े कर दिए हैं, एम्स के एडमिनिस्ट्रेशन ने हाथ खड़े कर दिए हैं कि हम आगे अब इस बॉडी को सही कंडीशन में प्रिजर्व करके नहीं रख पाएंगे, तो परिवार इस वक्त क्या सोच रहा है, क्या फैसला करने वाला है?
0: हम बड़ी मुसीबत में हैं। आप ये देख रहे हैं, ये बहुत बड़ा काला अध्याय है, लिखा जा चुका है जुडिशरी के नाम पर, कि हम पहले दिन से चिल्ला रहे हैं कि बॉडी को, आज भी हमारी गुजारिश है कि बॉडी को किसी तरीके से उन सारी सुविधाओं में एक प्रॉपर जगह पहुंचाया जाए ताकि साक्ष्य सामने आए। लिगेचर के अलावा लड़की की हाइट भी कम रखी गई। लिगेचर तो साफ साफ समझ में आ रहा है कि अगर लिगेचर आ जाता ये डाउरी केस में, अगर आत्महत्या भी अगर पहले क्लियर आ जाती तो इनको अरेस्ट करना पड़ जाता, उसको अरेस्ट बचाने के लिए ये फ्रेमवर्क किया गया, ये साफ साफ समझ में आ रहा है। फिर कल ड्यूरिंग उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हैं, जो वीडियोग्राफी हो रही हैं चारों तरफ से, वो लेडी एक्यूज्ड जो है नंबर वन, वो कह रही है बार बार सबसे कि हम जानते हैं, हम उसको जब जुडिशरी की रिक्वायरमेंट होगी वो प्रस्तुत किया जाएगा। तो जिसके इनाम है, जिस एक्यूज्ड के ऊपर फरार है, वो क्यों नहीं पुलिस उनको, जब वो टेलीविज़न पे कह रही हैं कि वो प्रस्तुत कर सकती हैं, तो क्यों नहीं उनको कस्टडी में लेके पूछा जाता है कि उसको कहाँ हाइड कर रहा है?
1: ये तमाम सवालों के बीच इस वक्त जो बड़ा सवाल है, अब आपके लिए और आपके परिवार के लिए आगे क्या, आप इस फैसले का इंतज़ार हालांकि अभी कर रहे हैं, लेकिन अभी क्या सोच रहे हैं, आप क्या करेंगे? अब
0: बहुत मुश्किल में आ गए हालात। मैं तभी इसके लिए फिर पुरजोर मेरी निवेदन है सभी से कि यहाँ तो हमें न्याय की उम्मीद ख़त्म हो गई है, हमें स्वतंत्र जांच के लिए किसी दूसरे राज्य में एससी की निगरानी में आगे की कार्रवाई हो। और
1: कानून के जानकारों कह रहे हैं कि परिवार को अब हाई कोर्ट जाना चाहिए क्योंकि ये डिस्ट्रिक्ट और सेशंस कोर्ट के जुरिसडिक्शन में भी नहीं आता है।
0: जी, ऐसा है कि ऐसे केसेस में जब जहां पर इतने इन्फ्लुएंस होते हैं तो रेयरस्ट और रेयस्ट केस मान करके सुप्रीम कोर्ट भी संज्ञान लेता है। ये ऐसे कई उदाहरण हैं कि जहाँ पर इतना लंबा प्रोसीजर ना करके सुप्रीम कोर्ट ने अधिकार दिया है पीड़िता को कि उसका हम इस्तेमाल करना चाहेंगे और हम चाहेंगे कि जो हमारा अधिकार है वो हमें मिले।
1: बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो अभी अदालत का फैसला आना भी बाकी है, लेकिन परिवार इस गुहार के साथ पहुंचा है अदालत कि उन्हें सेकंड पोस्टमार्टम करने की इजाज़त दी जाए और इसकी तफ्तीश मध्य प्रदेश भोपाल से बाहर हो।
2: Shifting our focus to political stories coming in, leader of opposition in the Lok Sabha, Rahul Gandhi, has once again stirred the hornet's nest after his comments from a Rai Bareli rally went viral, where he regarded PM Modi, HM Shah as traitors. During his speech, while thanking Congress workers, Rahul said that when you meet RSS workers, tell them your Prime Minister, Home Minister and organization are traitors and that you have attacked Ambedkar and the Constitution. The remarks have drawn sharp responses from the Bharatiya Janata Party, with BJP President Nitin Naveen leading the charge, calling Rahul Gandhi desperate and despondent. Meanwhile, Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath has said that this only shows the divisive mindset of the Congress Party and shows that how the Congress Party disregards the 145 crore countrymen who have given the mandate to the BJP. Take a look at the reactions.
3: जब ये आरएसएस के कार्यकर्ता आपके सामने आएंगे, नरेंद्र मोदी की बात करेंगे, अमित शाह की बात करेंगे, उनसे आप सामने उनको कहो कि आपका प्रधानमंत्री गद्दार है, आपका होम मिनिस्टर गद्दार है, आपका संगठन गद्दार है, आपने हिंदुस्तान को बेचने का काम किया है, आपने हमारे संगठन, आपने हमारे संविधान पर आक्रमण किया है, आपने अंबेडकर जी पर आक्रमण किया है।

0: before PM, that we can say negligence, and we will conduct a separate inquiry about it. But when we came to know, the belt was sent to hospital and they gave us a report. Means it is not, it will not have any adverse impact on our investigation. Now the thing.
1: Do you think it's required to match the marks on her neck with that belt which was used to hang?
0: Yeah, it is required, and that was done.
1: It doesn't affect the final report?
0: Yeah, yeah.
1: The delay doesn't affect the final report?
0: Delay doesn't affect the final report.
1: तो सेकेंड पोस्टमार्टम की डिमांड लेकर ट्विशा शर्मा का परिवार अदालत पहुंचा है और सुनवाई पूरी हो चुकी है. अब इंतजार है फैसले का. इस बीच अदालती कार्रवाई में क्या कुछ कहा गया ये समझने की कोशिश करते हैं. ट्विशा के पिता नवनिधि शर्मा जी हमारे साथ हैं. आपने अपना पक्ष रखा लेकिन आप अदालत में पहुँचे इससे ठीक पहले आपको एक पुलिस की तरफ से चिट्ठी भी मिल गई कि एम्स भोपाल में वो सारे इंतज़ाम नहीं हैं जो एक बॉडी को प्रिजर्व करने के लिए होने चाहिए. -4 डिग्री तक इंतज़ाम है, -80 डिग्री तक नहीं है. तो लंबे समय तक बॉडी संभाली नहीं जा सकती. आप इस चिट्ठी को लेकर अदालत पहुंचे और अब सुनवाई खत्म हो चुकी है, फैसले का इंतजार है. आपको लग रहा है रिलीफ मिलेगा और किस तरह की उम्मीद आप अदालत के फैसले से लगा के रखें?
2: मैडम आप देख लीजिए, हम पहले दिन से PM2 की मांग कर रहे थे. ये अपने मकसद में कामयाब हो गए. ये बॉडी को डिकम्पोज करने, मैं पहले दिन से बोल रहा था कि ये बॉडी को डिकम्पोज कर रहे हैं ताकि इनकी जो गलतियाँ हैं वो छुप जाएँ. आज लिगेचर जो PM के टाइम में रिक्वायर्ड रहता है वो 15 तारीख के बाद इनको सबमिट किया गया, क्योंकि 15 तारीख के बाद इसलिए सबमिट किया गया क्योंकि इधर इनकी एंटीसिपेटरी बेल भी थी. ये बहुत जुडिशियल सिस्टम से सब लोगों ने मिलकर के एक बहुत बड़ा फ्रेमवर्क है, फ्रेम करके इसको काम किया है. ऐसा लगता है कि इसमें कितने अपराधी शामिल हैं जो बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए हैं. आप ये देखिए कि बगैर लिगेचर के PM रिपोर्ट उन्होंने रिलीज़ कर दी. प्लस आप देखिए कि एक व्यक्ति को आपने कैसे उस सेम ग्राउंड्स पर एक व्यक्ति को आपने जो है उसका बेल आउट कैंसिल कर दिया, बेल एंटिसिपेटरी बेल, और एक को ग्रांट कर दिया. और वो आदमी को आपने खुला छोड़ दिया TV पे और
1: अपना
2: सारी
1: डिफेंस रखने के लिए, अपने डिफेंड करने के लिए, और सह अभियुक्त भी हैं वो. ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि पुलिस कह रही है कि सबसे सख्त कानून लगाया गया है डाउरी का, दहेज का, बावजूद इसके उनको एंटिसिपेटरी बेल मिल जाती है. हालांकि मीडिया के दबाव के बाद ये भी बात सामने आई कि बेटे को नहीं मिल पाई जो कि दोनों के लिए होना चाहिए था, लेकिन ये अदालत का फैसला है इसीलिए इसे मानना होगा. ऐसे में अब जब आप चिट्ठी आपके हाथ में है और पुलिस ने हाथ खड़े कर दिए हैं, एम्स के एडमिनिस्ट्रेटर स्टेशन ने हाथ खड़े कर दिए हैं कि हम आगे अब इस बॉडी को सही कंडीशन में प्रिजर्व करके नहीं रख पाएंगे, तो परिवार इस वक्त क्या सोच रहा है, क्या फैसला करने वाला है?
2: हम बड़ी मुसीबत में हैं. आप ये देख रहे हैं, ये बहुत बड़ा काला अध्याय है, लिखा जा चुका है जुडिशरी के नाम पर कि हम पहले दिन से चिल्ला रहे हैं कि बॉडी को, आज भी हमारी गुजारिश है कि बॉडी को किसी तरीके से उन सारी सुविधाओं में एक प्रॉपर जगह पहुँचाया जाए ताकि साक्ष्य सामने आए. लिगेचर के अलावा लड़की की हाइट भी कम रखी गई. लिगेचर तो साफ साफ समझ में आ रहा है कि अगर लिगेचर आ जाता ये डाउरी केस में, अगर आत्महत्या भी अगर पहले क्लियर आ जाती तो इनको अरेस्ट करना पड़ जाता. उसको अरेस्ट बचाने के लिए ये फ्रेमवर्क किया गया, ये साफ साफ समझ में आ रहा है. फिर कल ड्यूरिंग उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हैं, जो वीडियोग्राफी हो रही हैं चारों तरफ से, वो लेडी एक्यूज्ड जो है नंबर 1, वो कह रही है बार बार सबसे कि हम जानते हैं, हम उसको जब जुडिशरी की रिक्वायरमेंट होगी वो प्रस्तुत किया जाएगा. तो जिसके इनाम है, जिस अक्यूज्ड के ऊपर फरार है, वो क्यों नहीं पुलिस उनको, जब वो टेलीविज़न पे कह रही हैं कि वो प्रस्तुत कर सकती हैं, तो क्यों नहीं उनको कस्टडी में लेके पूछा जाता है कि उसको कहाँ हाइड कर
1: रहा है? ये तमाम सवालों के बीच इस वक्त जो बड़ा सवाल है, अब आपके लिए और आपके परिवार के लिए आगे क्या, आप इस फैसले का इंतज़ार हालांकि अभी कर रहे हैं, लेकिन अभी क्या सोच रहे हैं आप, क्या करेंगे अब?
2: बहुत मुश्किल में आ गए हालात. मैं तभी इसके लिए फिर पुरजोर मेरी निवेदन है सभी से कि यहाँ तो हमें न्याय की उम्मीद ख़त्म हो गई है. हमें स्वतंत्र जांच के लिए किसी दूसरे राज्य में SC की निगरानी में आगे की कार्रवाई हो. और
1: कानून के जानकारों कह रहे हैं कि परिवार को अब हाई कोर्ट जाना चाहिए क्योंकि ये डिस्ट्रिक्ट और सेशंस कोर्ट के जुरिसडिक्शन में भी नहीं आता है.
2: जी, ऐसा है कि ऐसे केसेस में जब जहां पर इतने इन्फ्लुएंस होते हैं और तो रेयरस्ट और रेयस्ट केस मान करके सुप्रीम कोर्ट भी संज्ञान लेता है. ये ऐसे कई उदाहरण हैं

0: कि जहाँ पर इतना लंबा प्रोसीजर ना करके सुप्रीम कोर्ट ने अधिकार दिया है पीड़िता को कि उसका हम इस्तेमाल करना चाहेंगे और हम चाहेंगे कि जो हमारा अधिकार है वो हमें मिले।
1: बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो अभी अदालत का फैसला आना भी बाकी है, लेकिन परिवार इस गुहार के साथ पहुंचा है अदालत कि उन्हें सेकंड पोस्टमार्टम करने की इजाज़त दी जाए और इसकी तफ्तीश मध्य प्रदेश और भोपाल से बाहर हो।
2: Shifting our focus to political stories, coming in, leader of opposition in the Lok Sabha, Rahul Gandhi, has once again stirred the hornet's nest after his comments from a Rai Bareli rally went viral, where he regarded PM Modi, HM Shah as traitors. During his speech, while thanking Congress workers, Rahul said that when you meet RSS workers, tell them your Prime Minister, Home Minister and organization are traitors and that you have attacked Ambedkar and the Constitution. The remarks have drawn sharp responses from the Bharatiya Janata Party, with BJP President Nitin Naveen leading the charge, calling Rahul Gandhi desperate and despondent. Meanwhile, Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath has said that this only shows the divisive mindset of the Congress Party and shows that how the Congress Party disregards the 145 crore countrymen who have given the mandate to the BJP. Take a look at the reactions.
3: जब ये आरएसएस के कार्यकर्ता आपके सामने आएंगे, नरेंद्र मोदी की बात करेंगे, अमित शाह की बात करेंगे, उनसे आप सामने उनको कहो कि आपका प्रधानमंत्री गद्दार है, आपका होम मिनिस्टर गद्दार है, आपका संगठन गद्दार है, आपने हिंदुस्तान को बेचने का काम किया है, आपने हमारे संगठन, आपने हमारे संविधान पर आक्रमण किया है, आपने अंबेडकर जी पर आक्रमण किया है, आपने वीरापासी जी पर आक्रमण किया है, आपने गांधी जी पर आक्रमण किया है।
4: संविधान पर आक्रमण करता है, जो संविधान को नष्ट करता है उसको आप क्या कहोगे? उसको क्या कहोगे? गद्दार कहोगे। इसीलिए मैंने खुल के कहा है कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह संविधान पर आक्रमण कर रहे हैं।
5: राहुल गांधी जी का आज का बयान बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और कहीं ना कहीं उनकी अराजकतावादी मानसिकता को दिखाता है। मैं मानता हूं कि भारतीय राजनीति में जहां सुचिता, सामाजिकता और कहीं ना कहीं एक दूसरे को सम्मान देने की प्रक्रिया है, उसमें उनका यह बयान बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं मानता हूं कि लगातार हो रही हार, निराशा कहीं ना कहीं उनके स्वभाव और उनके चरित्र में दिख रहा है और यही हताशा और निराशा आज उनके इस सब तरह के शब्दों के बयान आ रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं राहुल गांधी जी, आपके पूर्वजों ने इस देश की जमीन और जमीर को हमेशा गिरवी रखने का काम किया, कभी हमारे सैनिकों के मनोबल को बढ़ाने का काम नहीं किया, लेकिन हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस देश की जमीन भी सुरक्षित हुई और देश के लोगों का जमीर भी मजबूत हुआ।
6: राहुल जी पे आरोप तो लगाते रहते हैं, जब देश में जब देश के बाहर कोई बात बोलते हैं तो पूरा देश जानता है कि राहुल गांधी दिल का साफ आदमी है। वो दिल में जो बात आती जुबान पे लाते हैं, राजनीति नहीं करते हैं। नंबर तीन, राहुल गांधी जिस प्रकार से बार बार टाइमली वो वार्न करते सरकार को, नोटबंदी हो तब भी, कोविड आ गया तब भी, आर्थिक स्थिति नाजुक दौर पर चल रही है तब भी, लगातार वो नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं।
2: द स्टेज इज सेट फॉर बैटल ग्राउंड उत्तर प्रदेश, द स्टेट हेड्स टू पोल नेक्स्ट ईयर, बट द पोलिटिकल टेम्परेचर्स आर ऑलरेडी सोरिंग। द कांग्रेस पार्टी इज अ फ्रेश पोलिटिकल अटैक ऑन द बीजेपी आफ्टर इट्स विक्ट्री ऑफ द कांग्रेस पार्टी इन केरला। इट हैज नाउ मेड एन अर्ली पिच फॉर अ कम बैक इन उत्तर प्रदेश, one of the most crucial political backgrounds and battlegrounds in the country. Rahul Gandhi was in Rai Bareli, where he addressed a Bahujan Swabhiman Sabha. The Congress MP alleged that the constitution is under attack. The leader of opposition in Lok Sabha invoked B.R. Ambedkar and Mahatma Gandhi as he hit out at the Modi government, declaring that those who bow before Ambedkar do not protect his ideology. Rahul Gandhi also warned that the country was heading towards a massive economic crisis that would severely impact Uttar Pradesh's youth, farmers, laborers and small businessmen. The BJP has called him an obstructionist. Take a look at the reactions.
7: Is kitab mein ek vichardhara hai, वो अम्बेडकर

0: जी के खून में थी, वीरापासी जी के खून में थी, महात्मा गांधी जी के खून में थी, और हर प्रदेश में आपको कोई ना कोई व्यक्ति मिलेगा जो इस किताब के लिए लड़ा था और मरा था। अंबेडकर जी की बात होती है, हाथ जोड़े जाते हैं, मगर जब अंबेडकर जी के संविधान पर आरएसएस खुलकर आक्रमण करता है, फाड़ के फेंक देता है, वही लोग जो अंबेडकर जी की मूर्ति के सामने जाके मत्था टेकते हैं, वही लोग अंबेडकर जी की विचारधारा को भूल जाते हैं, वही लोग अंबेडकर जी की विचारधारा की रक्षा नहीं करते।
1: देश की जनता के साथ क्या खिलवाड़ हो रहा है, मतलब देश में पेट्रोल की कमी, गैस की कमी, बिजनेस बंद हो रहे हैं, फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है, किसानों को खाद नहीं मिलेगी, पूरा का पूरा इंडस्ट्रियल सिस्टम हिलेगा, समय आने वाला है।
2: आफ्टर अ सीरीज ऑफ ह्यूमिलिएटिंग इलेक्टोरल डिफीट्स, मिस्टर राहुल गांधी seems to have lost his sense of political balance. Rahul Gandhi's bizarre remarks about the Indian economy only go on to show that he is living in his own la-la land of lies and delusion.
3: And now let's talk about the political alliance. Was it merely a courtesy visit or a political message wrapped in secrecy? A sudden visit by Congress leaders to BSP chief Mayawati's residence in Lucknow has triggered intense political speculation in Uttar Pradesh. Two Congress leaders, Rajendra Pal Gautam and Barabanki MP Tanuj Punia, reached BSP chief Mayawati's residence in Lucknow hoping to meet her. But sources say that the BSP Supremo refused to meet them, forcing the Congress leaders to return empty-handed. Officially, Congress says this was merely a courtesy call to inquire about Mayawati's health. But the timing of this outreach has triggered intense speculation. Why did Congress leaders go without an appointment? Was there a political message meant for Mayawati? And does this indicate unease within the INDIA alliance in Uttar Pradesh? While the questions remain, take a look at the reactions.
4: हम लोग की कल अनुसूचित जाति विभाग की बैठक थी कांग्रेस कार्यालय में, उसमें चर्चा हो रही थी, सामाजिक संगठनों से चर्चा हो रही थी, समाज के सब वरिष्ठ लोग आए थे वहाँ पे, सम्मानित लोग आए थे, तो मीटिंग में ही जो है मायावती जी की स्वास्थ्य के बारे में भी चर्चा हुई, कैसे हैं, क्या हालचाल है, समाज की बड़ी नेता हैं, तो जब वहाँ से निकले हैं तो जस्ट बगल में उनका आवास पड़ता है, आवास पर रोकी गाड़ी, राजेंद्रपाल जी ने ये बताया कि जो है उन्हें समाज की बड़ी नेता हैं और कई दिनों से टीवी पे नहीं दिखी, तो उनके गेट पे हम लोग गए, गेट पे हम लोगों ने पर्ची लिख कर दी, अवेलेबिलिटी नहीं थी उनकी तो मुलाकात नहीं हो पाई, लेकिन इसमें हम लोग केवल उनसे उनके स्वास्थ्य की जानकारी, उनका हालचाल लेने के लिए व्यक्तिगत रूप से पहुंचे थे, लेकिन अफसोस समय नहीं मिल पाया।
3: Shifting our focus to Karnataka, the Siddaramaiah government has completed 3 years in office. Amid this, the chief minister chair tussle has only intensified in the state. This is the old Karnataka leadership war that is once again threatening to become a challenge for the National Congress leadership in Delhi, which is the Congress High Command. Even as the party has just coronated its chief minister in Kerala, the headache remains the same. In the latest, Karnataka Chief Minister D.K. Shivakumar has issued a statement saying he will go down to Delhi once the High Command calls, and said that it was the top brass that would make the final call. Meanwhile, Siddaramaiah also wants a rejig in the cabinet soon. A big NDTV scoop has revealed that amid the tussle, D.K. Shivakumar's loyalists will be heading to Delhi to mount pressure on the party High Command. Citing the completion of polls, the Deputy Chief Minister's loyalists have argued for the promises made to be fulfilled now. Earlier, during the Keralam Chief Minister's oath, a key huddle took place with regards to the Chief Minister chair tussle. What will

0: doesn't affect the final report?
1: Delay doesn't affect the final report.
0: तो सेकेंड पोस्टमार्टम की डिमांड लेकर त्रिशा शर्मा का परिवार अदालत पहुंचा है और सुनवाई पूरी हो चुकी है अब

0: आप इस चिट्ठी को लेकर अदालत पहुंचे और अब सुनवाई खत्म हो चुकी है, फैसले का इंतजार है, आपको लग रहा है रिलीफ मिलेगा और किस तरह की उम्मीद आप अदालत के फैसले से लगा के रखें?
1: मैडम आप देख लीजिए, हम पहले दिन से PM2 की मांग कर रहे थे, ये अपने मकसद में कामयाब हो गए। ये बॉडी को डिकम्पोज करने, मैं पहले दिन से बोल रहा था कि ये बॉडी को डिकम्पोज कर रहे हैं ताकि इनकी जो गलतियाँ हैं वो छुप जाएँ। आज लिगेचर जो PM के टाइम में रिक्वायर्ड रहता है वो 15 तारीख के बाद इनको सबमिट किया गया, क्योंकि 15 तारीख के बाद इसलिए सबमिट किया गया क्योंकि इधर इनकी एंटिसिपेटरी बेल भी थी। ये बहुत जुडिशियल सिस्टम से सब लोगों ने मिल करके एक बहुत बड़ा फ्रेमवर्क है फ्रेम करके इसको काम किया है। ऐसा लगता है कि इसमें कितने अपराधी शामिल हैं जो बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए हैं। आप ये देखिए कि बगैर लिगेचर के PM रिपोर्ट उन्होंने रिलीज़ कर दी, प्लस आप देखिए कि एक व्यक्ति को आपने कैसे उस सेम ग्राउंड्स पर एक व्यक्ति को आपने जो है उसका बेल आउट कैंसिल कर दिया, बेल एंटिसिपेटरी बेल, और एक को ग्रांट कर दिया और वो आदमी को आपने खुला छोड़ दिया TV पे और सारी
0: डिफेंस रखने के लिए, अपने डिफेंड करने के लिए, और सह अभियुक्त भी हैं वो। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि पुलिस कह रही है कि सबसे सख्त कानून लगाया गया है डाउरी का, दहेज का, बावजूद इसके उनको एंटिसिपेटरी बेल मिल जाती है। हालांकि मीडिया के दबाव के बाद ये भी बात सामने आई कि बेटे को नहीं मिल पाई, जो कि दोनों के लिए होना चाहिए था, लेकिन ये अदालत का फैसला है इसीलिए इसे मानना होगा। ऐसे में अब जब आप चिट्ठी आपके हाथ में है और पुलिस ने हाथ खड़े कर दिए हैं, एम्स के एडमिनिस्ट्रेशन ने हाथ खड़े कर दिए हैं कि हम आगे अब इस बॉडी को सही कंडीशन में प्रिजर्व करके नहीं रख पाएंगे, तो परिवार इस वक्त क्या सोच रहा है, क्या फैसला करने वाला है?
1: हम बड़ी मुसीबत में हैं। आप ये देख रहे हैं, ये बहुत बड़ा काला अध्याय है, लिखा जा चुका है जुडिशरी के नाम पर, कि हम पहले दिन से चिल्ला रहे हैं कि बॉडी को, आज भी हमारी गुजारिश है कि बॉडी को किसी तरीके से उन सारी सुविधाओं में एक प्रॉपर जगह पहुंचाया जाए ताकि साक्ष्य सामने आए। लिगेचर के अलावा लड़की की हाइट भी कम रखी गई। लिगेचर तो साफ साफ समझ में आ रहा है कि अगर लिगेचर आ जाता ये डाउरी केस में, अगर आत्महत्या भी अगर पहले क्लियर आ जाती तो इनको अरेस्ट करना पड़ जाता, उसको अरेस्ट बचाने के लिए ये फ्रेमवर्क किया गया, ये साफ साफ समझ में आ रहा है। फिर कल ड्यूरिंग उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हैं, जो वीडियोग्राफी हो रही हैं चारों तरफ से, वो लेडी एक्यूज्ड जो है नंबर वन, वो कह रही है बार बार सबसे कि हम जानते हैं, हम उसको जब जुडिशरी की रिक्वायरमेंट होगी वो प्रस्तुत किया जाएगा। तो जिसके इनाम है, जिस एक्यूज्ड के ऊपर फरार है, वो क्यों नहीं पुलिस उनको, जब वो टेलीविज़न पे कह रही हैं कि वो प्रस्तुत कर सकती हैं, तो क्यों नहीं उनको कस्टडी में लेके पूछा जाता है कि उसको कहाँ हाइड कर रखा है?
0: ये तमाम सवालों के बीच इस वक्त जो बड़ा सवाल है, अब आपके लिए और आपके परिवार के लिए आगे क्या, आप इस फैसले का इंतज़ार हालांकि अभी कर रहे हैं, लेकिन अभी क्या सोच रहे हैं आप, क्या करेंगे अब?
1: बहुत मुश्किल में आ गए हालात। मैं तभी इसके लिए फिर पुरजोर मेरी निवेदन है सभी से कि यहाँ तो हमें न्याय की उम्मीद ख़त्म हो गई है, हमें स्वतंत्र जांच के लिए किसी दूसरे राज्य में SC की निगरानी में आगे की कार्रवाई हो।
0: और कानून के जानकारों कह रहे हैं कि परिवार को अब हाई कोर्ट जाना चाहिए क्योंकि ये डिस्ट्रिक्ट और सेशंस कोर्ट के जुरिसडिक्शन में भी नहीं आता है।
1: जी ऐसा है कि ऐसे केसेस में जब जहां पर इतने इन्फ्लुएंस होते हैं तो रेयरस्ट और रेयस्ट केस मान करके सुप्रीम कोर्ट भी संज्ञान लेता है। ये ऐसे कई उदाहरण हैं कि जहाँ पर इतना लंबा प्रोसीजर ना करके सुप्रीम कोर्ट ने अधिकार दिया है पीड़िता को कि उसका हम इस्तेमाल करना चाहेंगे और हम चाहेंगे कि जो हमारा अधिकार है वो हमें मिले।
0: बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो अभी अदालत का फैसला आना भी बाकी है, लेकिन परिवार इस गुहार के साथ पहुंचा है अदालत कि उन्हें सेकंड पोस्टमार्टम करने की इजाज़त दी जाए और इसकी तफ्तीश मध्य प्रदेश और भोपाल से बाहर हो।
2: Shifting our focus to political stories, coming in, leader of opposition in the Lok Sabha, Rahul Gandhi, has once again stirred the hornet's nest after his comments from a Rai Bareli rally went viral, where he regarded PM Modi, HM Shah as traitors. During his speech, while thanking Congress workers, Rahul said that when you meet RSS workers, tell them your Prime Minister, Home Minister and organization are traitors and that you have attacked Ambedkar and the Constitution. The remarks have drawn sharp responses from the Bharatiya Janata Party, with BJP President Nitin Naveen leading the charge, calling Rahul Gandhi desperate and despondent. Meanwhile, Uttar Pradesh Chief Minister

0: Minister Yogi Adityanath has said that this only shows the divisive mindset of the Congress party and shows that how the Congress party disregards the 145 crore countrymen who have given the mandate to the BJP. Take a look at the reactions.
1: जब ये आरएसएस के कार्यकर्ता आपके सामने आएंगे, नरेंद्र मोदी की बात करेंगे, अमित शाह की बात करेंगे, उनसे आप सामने उनको कहो कि आपका प्रधानमंत्री गद्दार है, आपका होम मिनिस्टर गद्दार है, आपका संगठन गद्दार है, आपने हिंदुस्तान को बेचने का काम किया है, आपने हमारे संगठन, आपने हमारे संविधान पर आक्रमण किया है, आपने अंबेडकर जी पर आक्रमण किया है, आपने वीरापासी जी पर आक्रमण किया है, आपने गांधी जी पर आक्रमण किया है।
2: संविधान पर आक्रमण करता है, जो संविधान को नष्ट करता है उसको आप क्या कहोगे? उसको क्या कहोगे? गद्दार कहोगे। इसीलिए मैंने खुल के कहा है कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह संविधान पर आक्रमण कर रहे हैं।
3: राहुल गांधी जी का आज का बयान बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और कहीं ना कहीं उनकी अराजकतावादी मानसिकता को दिखाता है। मैं मानता हूं कि भारतीय राजनीति में जहां सुचिता, सामाजिकता और कहीं ना कहीं एक दूसरे को सम्मान देने की प्रक्रिया है, उसमें उनका यह बयान बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं मानता हूं कि लगातार हो रही हार, निराशा कहीं ना कहीं उनके स्वभाव और उनके चरित्र में दिख रहा है और यही हताशा और निराशा आज उनके इस सब तरह के शब्दों के बयान आ रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं राहुल गांधी जी, आपके पूर्वजों ने इस देश की जमीन और जमीन को हमेशा गिरवी रखने का काम किया, कभी हमारे सैनिकों के मनोबल को बढ़ाने का काम नहीं किया, लेकिन हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस देश की जमीन भी सुरक्षित हुई और देश के लोगों का जमीर भी मजबूत हुआ।
4: राहुल जी पे आरोप तो लगाते रहते हैं, जब देश में जब देश के बाहर कोई बात बोलते हैं तो पूरा देश जानता है कि राहुल गांधी दिल का साफ आदमी है। वो दिल में जो बात आती जुबान पे लाते हैं, राजनीति नहीं करते हैं। नंबर तीन, राहुल गांधी जिस प्रकार से बार बार टाइमली वो वार्न करते सरकार को, नोटबंदी हो तब भी, कोविड आ गया तब भी, आर्थिक स्थिति नाजुक दौर पर चल रही है तब भी, लगातार वो नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं।
0: The stage is set for battleground Uttar Pradesh. The state heads to poll next year, but the political temperatures are already soaring. The Congress party is a fresh political attack on the BJP. After its victory of the Congress party in Kerala, it has now made an early pitch for a comeback in Uttar Pradesh, one of the most crucial political backgrounds and battlegrounds in the country. Rahul Gandhi was in Raibareli, where he addressed a Bahujan Swabhiman Sabha. The Congress MP alleged that the constitution is under attack. The leader of opposition in Lok Sabha invoked B.R. Ambedkar and Mahatma Gandhi as he hit out at the Modi government, declaring that those who bow before Ambedkar do not protect his ideology. Rahul Gandhi also warned that the country was heading towards a massive economic crisis that would severely impact Uttar Pradesh's youth, farmers, laborers and small businessmen. The BJP has called him an obstructionist. Take a look at the reactions.
5: इस किताब में एक विचारधारा है, वो अंबेडकर जी के खून में थी, वीरापासी जी के खून में थी, महात्मा गांधी जी के खून में थी, और हर प्रदेश में आपको कोई ना कोई व्यक्ति मिलेगा जो इस किताब के लिए लड़ा था और मरा था। अंबेडकर जी की बात होती है, हाथ जोड़े जाते हैं, मगर जब अंबेडकर जी के संविधान पर आरएसएस खुलकर आक्रमण करता है, फाड़ के फेंक देता है, वही लोग जो अंबेडकर जी की मूर्ति के सामने जाके मत्था टेकते हैं, वही लोग अंबेडकर जी की विचारधारा को भूल जाते हैं, वही लोग अंबेडकर जी की विचारधारा की रक्षा नहीं करते।
2: देश की जनता के साथ क्या खिलवाड़ हो रहा है? मतलब देश में पेट्रोल की कमी, गैस की कमी, बिजनेस बंद हो रहे हैं, फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है, किसानों को खाद नहीं मिलेगी, पूरा का पूरा इंडस्ट्रियल सिस्टम हिलेगा, समय आने वाला है।
6: आफ्टर अ सीरीज ऑफ ह्यूमिलिएटिंग इलेक्टोरल डिफीट्स, मिस्टर राहुल गांधी सीम्स टू हैव लॉस्ट हिज सेंस ऑफ पॉलिटिकल बैलेंस। राहुल गांधीज bizarre remarks about the Indian economy only go on to show that he is living in his own la-la land of lies and delusion.
0: And now let's talk about the political alliance. Was it merely a courtesy visit or a political message wrapped in secrecy? A sudden visit by Congress leaders to BSP chief Mayawati's residence in Lucknow has triggered intense political speculation in Uttar Pradesh. Two Congress leaders, Rajendra Pal Gautam and Barabanki MP Tanuj Punia, reached BSP chief Mayawati's residence in Lucknow hoping to meet her. But sources say that the BSP supremo refused to meet them, forcing the Congress leaders to return empty-handed. Officially, Congress says this was merely a courtesy call to inquire about Mayawati's health. But the timing of this outreach has triggered intense speculation. Why did Congress leaders go without an appointment? Was there a political message meant for Mayawati? And does this indicate unease within the INDIA alliance in Uttar Pradesh? While the questions remains, take a look at the reactions.
7: हम लोग की कल अनुसूचित जाति विभाग की बैठक थी कांग्रेस कार्यालय में, उसमें चर्चा हो रही थी, सामाजिक संगठनों से चर्चा हो रही थी, समाज के सब वरिष्ठ लोग आए थे वहाँ पे, सम्मानित लोग आए थे, तो मीटिंग में ही जो है मायावती जी की स्वास्थ्य के बारे में भी चर्चा हुई, कैसे हैं, क्या हालचाल है, समाज की बड़ी नेता हैं। तो जब वहाँ से निकले हैं तो जस्ट बगल में उनका आवास पड़ता है, आवास पे रोकी गाड़ी राजेंद्र पाल जी ने, ये बताया कि जो है उन्हें समाज की बड़ी नेता हैं और कई दिनों से टीवी पे नहीं दिखी हैं। तो उनके गेट पे हम लोग गए, गेट पे हम लोगों ने पर्ची लिख कर दी, अवेलेबिलिटी नहीं थी उनकी तो मुलाकात नहीं हो पाई, लेकिन इसमें हम लोग केवल उनसे उनके स्वास्थ्य की जानकारी, उनका हालचाल लेने के लिए व्यक्तिगत रूप से पहुँचे थे, लेकिन अफसोस समय नहीं मिल पाया।
0: Shifting our focus to Karnataka, the Siddaramaiah government has completed 3 years in office. Amid this, the chief minister chair tussle has only intensified in the state. This is the old Karnataka leadership war that is once again threatening to become a challenge for the National Congress leadership in Delhi, which is the Congress High Command. Even as the party has just coronated its chief minister in Kerala, the headache remains the same. In the latest, Karnataka Chief Minister D.K. Shivakumar has issued a statement saying he will go down to Delhi once the high command calls, and said that it was the top brass that would make the final call. Meanwhile, Siddaramaiah also wants a rejig in the cabinet soon. A big NDTV scoop has revealed that amid the tussle, D.K. Shivakumar's loyalists will be heading to Delhi to mount pressure on the party high command. Citing the completion of polls, the deputy chief minister's loyalists have argued for the promises made to be fulfilled now. Earlier, during the Keralam chief minister's oath, a key huddle took place with regards to the chief minister chair tussle. What will happen? But listen in to what D.K. Shivakumar exactly said.
8: I don't want to discuss anything. Whenever our party high command will ask us to go to Delhi, we definitely will go to Delhi. Because a lot of things Honorable Chief Minister is also keeping on his cards on the interest of the state. Now we are having a discussion on various issues. Our GBA election has also been announced by the court within 31st August. We'll make this a trade right.
9: At this point in time, you see your government has finished 3 years as well. We have been saying how that there still remains to be a confusion. You have been a very important leader from the Congress party who has been very vocal about what is the need at this point in time when we talk about the leadership as such as well. Will we be seeing you, this is the time that you feel the High Command has to put a full stop to the whole of leadership issue that we are seeing here in the state, sir? Is this the time that the Deputy CM needs to be given a chance, sir? What is your thought at this point in time? Because your government has finished 3 years. You have been quite patient about it. You have been the loyal person to be open about your statement as well, sir.
10: See, we have already asked the High Command to get interfere into the situation and solve the problem as early as possible. Because, yes. See, we want to face the election 2 years after. So we want this to be solved immediately. Whatever the decision High Command tells, we will follow that. But if they had given any promise to our DCM, it should be fulfilled.
11: Mallikarjun Kharge ji and our leader of the opposition, Rahul ji, Sonia ji has to take a decision in this issue. I hope in this end of this month, this is going to be settled. What will be the result? That is, the High Command has to take a decision. We are expecting, but this matter has to be settled as early as possible. Thank you.
0: A viral internet sensation just jumped from social media right into the world of high-stakes global diplomacy. You see, Prime Minister Narendra Modi's latest gift to his Italian counterpart has sent the internet into a frenzy. But this light-hearted moment has also triggered a bizarre accidental rush on the Indian stock market. Here is how a simple 1 rupee candy has taken over global headlines. Take a look.
12: Prime Minister Modi brought us a gift, a very, very good toffee.
13: It's the internet's favorite political friendship, and now it has its very own official flavor. During his bilateral visit to Italy, PM Modi handed Italian Prime Minister Giorgia Meloni a packet of classic Indian Melody chocolates. Meloni quickly took to social media, thanking Modi and calling the treat very, very good.
12: Prime Minister Modi brought us a gift, a very, very good toffee.
13: Launched way back in 1983, the iconic dual core chocolate candy defined childhood for generations of Indians. Its legendary advertising slogan, questioning why the toffee is so chocolatey, remains embedded in the country's pop culture history.
14: Ye melody, itni chocolatey kyun hai?
15: Melody khao, khud jaan jao.
13: The gesture is a direct nod to their viral internet nickname, #Melody. But the internet hype quickly triggered absolute chaos for retail investors back home. Desperate to cash in on the viral moment, eager traders rushed to buy shares of a listed company called Parley Industries, whose stocks, by the way, have surged over 5%. There is just one catch here. The company that actually makes Melody is Parley Products, which is entirely private and not traded on the stock market. Parley Industries just happens to share the famous name. While the stock market mix-up left some investors with a bitter taste, the iconic chocolate has never been more famous. Bureau Report, NDTV World.
0: Now, after this video of Prime Minister Narendra Modi and Italian counterpart Giorgia Meloni went viral, a political showdown over the video has erupted. The video from Rome shows an informal meeting between the two leaders and PM Modi gifting Melody a packet of Melody. But the politics over it escalates back home, with Congress leader Rahul Gandhi questioning why the Prime Minister is busy in making reels instead of helping the economy of the country. Take a look.
12: Prime Minister Modi brought us a gift, a very, very good toffee. Prime Minister Modi brought us a gift, a very, very good toffee.
15: Melody.
1: पता नहीं आपने आज मोदी जी का वीडियो देखा नहीं देखा देखा? WhatsApp यूनिवर्सिटी वालों ने देखा? वो इटली की राष्ट्रपति मेलोनी है, उनको नरेंद्र मोदी जी टॉफी खिला रहे हैं। रील बनाई है हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री इटली के प्रधानमंत्री को मेलोनी टॉफी दिए हैं।
16: तो हमें कहते हैं वर्क फ्रॉम होम और खुद करते हैं रोड शो, खुद जाते हैं 8,500 करोड़ के हवाई जहाज में विदेश, और सुना कोई मेलोडी की टॉफी भी किसी को गिफ्ट करने गए, पार्ले मेलोडी अभी देख रहा था। हंसिए मत, सच में हुआ है, मजाक नहीं कर रहा। हमें भी शुरू में लगता था ये मजाक हो रहा है, लेकिन ये सच में हो रहा है।
17: प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज डन अ ग्रेट डिप्लोमेटिक एफर्ट इन द कंट्रीज ही हैज विजिटेड। वी हैव अचीव्ड ग्रेट थिंग्स फॉर इंडिया। फॉर इंस्टेंस, द एनहांसमेंट ऑफ आवर स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स विद यूएई, 30 मिलियन बैरल्स विल बी केप्ट, एंड ऑल्सो सॉफ्ट टच हैज बीन गिवन बाय द एक्सचेंज ऑफ स्वीट्स, विच इज अ स्वीट जेस्चर इन डिप्लोमेसी। इट रिफ्लेक्ट्स द पर्सनल बॉन्डिंग इन केमिस्ट्री between Italian and Indian Prime Minister and Italian Indian people. But why is Rahul Gandhi having a bitter taste with this sweet gesture?
0: On that note, we are slipping into a very short break. Don't go anywhere.

0: We at NDTV traveled across the length and breadth of West Bengal. This was the hottest election in all of India. And all of India watched it on NDTV.
1: Why I say this, this could be a big story.
2: Thank you.
0: Stories that no one else had.
3: The memorial they have built is not just for Abhijit.
0: Houses still bear the scars of bombs that were thrown inside. Moments that gave competition viral fever.
4: जनता एक गुंडा राज को खत्म करना चाह रहा
5: बंगाल बचाने का वोट
6: फाइट फॉर जस्टिस फाइट फॉर एवरी वुमन हियर
0: व्हेन इट वाज एनीथिंग बंगाल यू ट्यून्ड इन ओनली टू एनडीटीवी दिस जीओजी सिलेक्शंस एनडीटीवी
7: साइज ऑफ फिश व्हाट टेस्ट ऑफ फिश यू लाइक
0: All of these people.
8: Kolkata tram.
9: The highest number of voters.
10: Tamil Nadu votes decisive.
11: Naprat Africa mahal hai. Udhampur patrao kya gaya ha.
12: I've always liked NDTV. It's the most reliable news channel more than anything.
13: TVK headquarters here.
14: Lot of thanks for NDTV. Congratulations to NDTV.
15: Thank the team for their incredible coverage of the Tamil Nadu election so far.
16: Fast moving, but still relaxed. Informative, but still unbiased.
12: So I really love the channel. I saw Shiv sir and I was really excited to meet him and tell hi. So I'm really happy I met you sir. Thank you so much.
17: Happy meeting NDTV team here.
18: Thanks for NDTV.
19: Padmija Joshi.
20: Shreya Shide.
21: This is Shreya Ghosh.
22: Rakhandeep Chaudhary.
23: Manoj Yalowiwal.
24: Deepak Gopanav.
25: This is Vikti.
26: Tanushka Datta.
27: Sam Daniel.
28: Vika Ramaswamy.
29: Ritu Rajpurohit.
30: Shiv Arun.
31: To all our viewers who've joined us, thank you very much for spending your time, for trusting NDTV.
32: The front lines of Kargil. The fury of Operation Sindhu.
33: So many attacks.
32: The chaos and cries of disaster zones to fighter jet cockpits and the world's most defining interviews.
33: It's incredible.
32: He has seen history break live, unfiltered. 20,000 hours of live broadcasting.
33: Welcome to Left, Right and Center.
32: Hard facts.
33: War struck country.
32: Hard questions.
33: In the Ukraine.
0: Our top focus remains Trisha's death case. It is now snowballing into major political and investigative flashpoint. Madhya Pradesh Chief Minister has met the family of Trisha. Madhya Pradesh government is set to seek a CBI probe into the case. Chief Minister Mohan Yadav has assured the family of justice and will write to the CBI requesting a takeover of the investigation. Meanwhile, Trisha's husband Samarth Singh remains on the run for the 8th straight day. With a 30,000 rupee reward announced for information on his whereabouts and a lookout notice now issued, suspense only lingers on his whereabouts. Meanwhile, the police have called the case a suicide. They say this is based on the only postmortem conducted so far, which is now under the shadow of police negligence. Police has now busted the mother-in-law's claims of Trisha having drugs. Police have clarified that they have not found any drugs. Meanwhile, the cops have written a letter to Trisha's parents and have asked them to take her body from mortuary as it is decomposing. But the suspense only lingers on how did Trisha die. And we also have the reactions coming in from the top cop who's probing the case. Take a look.
34: The belt, the debate is on why that belt, which was used by Trisha to hang herself, or the belt which was used to kill her, as the family alleges, was not submitted with the body when it was going for post-mortem. There was a delay, there was a lapse of the investigating officer. What do you have to say on that?
35: Well, that basically is that belt, of course, it was seized by FSL officers, but that was not sent to hospital before PM. That we can say negligence, and we will conduct a separate inquiry about it. But when we came to know, the belt was sent to hospital and they gave us a report. Means it is not; it will not have any adverse impact on our investigation. Now the thing.
34: What do you think it's required to match the marks on her neck with that belt which was used to hang?
35: Yeah, it is required, and that was done.
34: It doesn't affect the final report.
35: Yeah.
34: The delay doesn't affect the final report.
35: Delay doesn't affect the final report.
34: तो सेकेंड पोस्टमार्टम की डिमांड लेकर ट्विशा शर्मा का परिवार अदालत पहुंचा है और सुनवाई पूरी हो चुकी है, अब इंतजार है फैसले का। इस बीच अदालती कार्रवाई में क्या कुछ कहा गया ये समझने की कोशिश करते हैं। ट्विशा के पिता नवनिधि शर्मा जी हमारे साथ हैं। आपने अपना पक्ष रखा लेकिन आप अदालत में पहुंचे इससे ठीक पहले आपको एक पुलिस की तरफ से चिट्ठी भी मिल गई कि एम्स भोपाल में वो सारे इंतजाम नहीं हैं जो एक बॉडी को प्रिजर्व करने के लिए होने चाहिए। -4 डिग्री तक इंतजाम है, -80 डिग्री तक नहीं है, तो लंबे समय तक बॉडी संभाली नहीं जा सकती। आप इस चिट्ठी को लेकर अदालत पहुंचे और अब सुनवाई खत्म हो चुकी है, फैसले का इंतजार है, आपको लग रहा है रिलीफ मिलेगा और किस तरह की उम्मीद आप अदालत के फैसले से लगा के रखें?
2: मैडम आप देख लीजिए, हम पहले दिन से PM2 की मांग कर रहे थे, ये अपने मकसद में कामयाब हो गए। ये बॉडी को डिकम्पोज करने, मैं पहले दिन से बोल रहा था कि ये बॉडी को डिकम्पोज कर रहे हैं ताकि इनकी जो गलतियाँ हैं वो छुप जाएँ। आज लिगेचर जो PM के टाइम में रिक्वायर्ड रहता है वो 15 तारीख के बाद इनको सबमिट किया गया, क्योंकि 15 तारीख के बाद इसलिए सबमिट किया गया क्योंकि इधर इनकी एंटीसिपेटरी बेल भी थी। ये बहुत जुडिशियल सिस्टम से सब लोगों ने मिल करके एक बहुत बड़ा फ्रेमवर्क है, फ्रेम करके इसको काम किया है। ऐसा लगता है कि इसमें कितने अपराधी शामिल हैं जो बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए हैं। आप ये देखिए कि बगैर लिगेचर के PM रिपोर्ट उन्होंने रिलीज़ कर दी, प्लस आप देखिए कि एक व्यक्ति को आपने कैसे उस सेम ग्राउंड्स पर एक व्यक्ति को आपने जो है उसका बेल आउट कैंसिल कर दिया, बेल एंटिसिपेटरी बेल, और एक को ग्रांट कर दिया और वो आदमी को आपने खुला छोड़ दिया TV पे और
34: अपना
2: सारी
34: डिफेंस रखने के लिए, अपने डिफेंड करने के लिए, और सह अभियुक्त भी हैं वो। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि पुलिस कह रही है कि सबसे सख्त कानून लगाया गया है डाउरी का, दहेज का, बावजूद इसके उनको एंटिसिपेटरी बेल मिल जाती है। हालांकि मीडिया के दबाव के बाद ये भी बात सामने आई कि बेटे को नहीं मिल पाई जो कि दोनों के लिए होना चाहिए था, लेकिन ये अदालत का फैसला है इसीलिए इसे मानना होगा। ऐसे में अब जब आप चिट्ठी आपके हाथ में है और पुलिस ने हाथ खड़े कर दिए हैं, एम्स के स्टेशन ने हाथ खड़े कर दिए हैं कि हम आगे अब इस बॉडी को सही कंडीशन में प्रिजर्व करके नहीं रख पाएंगे, तो परिवार इस वक्त क्या सोच रहा है, क्या फैसला करने वाला है?
2: हम बड़ी मुसीबत में हैं। आप ये देख रहे हैं, ये बहुत बड़ा काला अध्याय है, लिखा जा चुका है जुडिशरी के नाम पर कि हम पहले दिन से चिल्ला रहे हैं कि बॉडी को, आज भी हमारी गुजारिश है कि बॉडी को किसी तरीके से उन सारी सुविधाओं में एक प्रॉपर जगह पहुँचाया जाए ताकि साक्ष्य सामने आए। लिगेचर के अलावा लड़की की हाइट भी कम रखी गई। लिगेचर तो साफ साफ समझ में आ रहा है कि अगर लिगेचर आ जाता ये डाउरी केस में, अगर आत्महत्या भी अगर पहले क्लियर आ जाती तो इनको अरेस्ट करना पड़ जाता, उसको अरेस्ट बचाने के लिए ये फ्रेमवर्क किया गया, ये साफ साफ समझ में आ रहा है। फिर कल ड्यूरिंग उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हैं, जो वीडियोग्राफी हो रही हैं चारों तरफ से, वो लेडी एक्यूज्ड जो है नंबर 1, वो कह रही है बार बार सबसे कि हम जानते हैं, हम उसको जब जुडिशरी की रिक्वायरमेंट होगी वो प्रस्तुत किया जाएगा। तो जिसके इनाम है, जिस अक्यूज्ड के ऊपर फरार है, वो क्यों नहीं पुलिस उनको, जब वो टेलीविज़न पे कह रही हैं कि वो प्रस्तुत कर सकती हैं, तो क्यों नहीं उनको कस्टडी में लेके पूछा जाता है कि उसको कहाँ हाइड कर
34: रहा है। तमाम सवालों के बीच इस वक्त जो बड़ा सवाल है, अब आपके लिए और आपके परिवार के लिए आगे क्या, आप इस फैसले का इंतज़ार हालांकि अभी कर रहे हैं, लेकिन अभी क्या सोच रहे हैं आप, क्या करेंगे अब?
2: बहुत मुश्किल में आ गए हालात, मैं तभी इसके लिए फिर पुरजोर मेरी निवेदन है सभी से कि यहाँ तो हमें न्याय की उम्मीद ख़त्म हो गई है, हमें स्वतंत्र जांच के लिए किसी दूसरे राज्य में SC की निगरानी में आगे की कार्रवाई हो। और
34: कानून के जानकारों कह रहे हैं कि परिवार को अब हाई कोर्ट जाना चाहिए क्योंकि ये डिस्ट्रिक्ट और सेशंस कोर्ट के जुरिसडिक्शन में भी नहीं आता है।
2: जी ऐसा है कि ऐसे केसेस में जब जहां पर इतने इन्फ्लुएंस होते हैं और तो रेयरस्ट और रेयस्ट केस मान करके सुप्रीम कोर्ट भी संज्ञान लेता है। ये ऐसे कई उदाहरण हैं कि जहाँ पर इतना लंबा प्रोसीजर ना करके सुप्रीम कोर्ट ने अधिकार दिया है पीड़िता को कि उसका हम इस्तेमाल करना चाहेंगे और हम चाहेंगे कि जो हमारा अधिकार है वो हमें मिले।
34: बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो अभी अदालत का फैसला आना भी बाकी है, लेकिन परिवार इस गुहार के साथ पहुंचा है अदालत कि उन्हें सेकंड पोस्टमार्टम करने की इजाज़त दी जाए और इसकी तफ्तीश मध्य प्रदेश भोपाल से बाहर हो।
0: Shifting our focus to political stories coming in, leader of opposition in the Lok Sabha, Rahul Gandhi, has once again stirred the hornet's nest. After his comments from a Rai Bareli rally went viral, where he regarded PM Modi, H.M. Shah as traitors. During his speech, while thanking Congress workers, Rahul said that when you meet RSS workers, tell them your Prime Minister, Home Minister and organization are traitors and that you have attacked Ambedkar and the Constitution. The remarks have drawn sharp responses from the Bharatiya Janata Party, with BJP President Nitin Naveen leading the charge, calling Rahul Gandhi desperate and despondent. Meanwhile, Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath has said that this only shows the divisive mindset of the Congress Party and shows that how the Congress Party disregards the 145 crore countrymen who have given the mandate to the BJP. Take a look at the reactions.
5: जब ये आरएसएस के कार्यकर्ता आपके सामने आएंगे, नरेंद्र मोदी की बात करेंगे, अमित शाह की बात करेंगे, उनसे आप सामने उनको कहो कि आपका प्रधानमंत्री गद्दार है, आपका होम मिनिस्टर गद्दार है, आपका संगठन गद्दार है, आपने हिंदुस्तान को बेचने का काम किया है, आपने हमारे संगठन, आपने हमारे संविधान पर आक्रमण किया है, आपने अंबेडकर जी पर आक्रमण किया है, आपने वीरापासी जी पर आक्रमण किया है, आपने गांधी जी पर आक्रमण किया है।
8: संविधान पर आक्रमण करता है, जो संविधान को नष्ट करता है, उसको आप क्या कहोगे? उसको क्या कहोगे? गद्दार कहोगे? इसलिए मैंने खुल के कहा है कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह संविधान पर आक्रमण कर रहे हैं।
9: राहुल गांधी जी का आज का बयान बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और कहीं ना कहीं उनकी अराजकतावादी मानसिकता को दिखाता है। मैं मानता हूं कि भारतीय राजनीति में जहां सुचिता, सामाजिकता और कहीं ना कहीं एक दूसरे को सम्मान देने की प्रक्रिया है, उसमें उनका यह बयान बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं मानता हूं कि लगातार हो रही हार, निराशा कहीं ना कहीं उनके स्वभाव और उनके चरित्र में दिख रहा है और यही हताशा और निराशा आज उनके इस सब तरह के शब्दों के बयान आ रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं राहुल गांधी जी, आपके पूर्वजों ने इस देश की जमीन और जमीर को हमेशा गिरवी रखने का काम किया, कभी हमारे सैनिकों के मनोबल को बढ़ाने का काम नहीं किया, लेकिन हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस देश की जमीन भी सुरक्षित हुई और देश के लोगों का जमीर भी मजबूत हुआ।
18: राहुल जी पे आरोप तो लगाते रहते हैं, जब देश में जब देश के बाहर कोई बात बोलते हैं तो पूरा देश जानता है कि राहुल गांधी दिल का साफ आदमी है। वो दिल में जो बात आती जुबान पे लाते हैं, राजनीति नहीं करते हैं। नंबर तीन, राहुल गांधी जिस प्रकार से बार बार टाइमली वो वार्न करते सरकार को, नोटबंदी हो तब भी, कोविड आ गया तब भी, आर्थिक स्थिति नाजुक दौर पर चल रही है तब भी, लगातार वो नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं।
0: द स्टेज इज सेट फॉर बैटल ग्राउंड उत्तर प्रदेश, द स्टेट हेड्स टू पोल नेक्स्ट ईयर, बट द पोलिटिकल टेम्परेचर्स आर ऑलरेडी सोरिंग। द कांग्रेस पार्टी इज अ फ्रेश पोलिटिकल अटैक ऑन द बीजेपी आफ्टर इट्स विक्ट्री ऑफ द कांग्रेस पार्टी इन केरला। इट हैज नाउ मेड एन अर्ली पिच फॉर अ कम बैक इन उत्तर प्रदेश, one of the most crucial political backgrounds and battlegrounds in the country. Rahul Gandhi was in Rai Bareli, where he addressed a Bahujan Swabhiman Sabha. The Congress MP alleged that the constitution is under attack. The leader of opposition in Lok Sabha invoked B.R. Ambedkar and Mahatma Gandhi as he hit out at the Modi government, declaring that those who bow before Ambedkar do not protect his ideology. Rahul Gandhi also warned that the country was heading towards a massive economic crisis that would severely impact Uttar Pradesh's youth, farmers, laborers and small businessmen. The BJP has called him an obstructionist. Take a look at the reactions.
19: Is kitab mein ek vichardhara hai, wo Ambedkar ji ke khoon mein thi, Veerapasi ji ke khoon mein thi, महात्मा गांधी जी के खून में थी, और हर प्रदेश में आपको कोई ना कोई व्यक्ति मिलेगा जो इस किताब के लिए लड़ा था और मरा था। अंबेडकर जी की बात होती है हाथ जोड़े जाते हैं, मगर जब अंबेडकर जी के संविधान पर आरएसएस खुलकर आक्रमण करता है, फाड़ के फेंक देता है, वही लोग जो अंबेडकर जी की मूर्ति के सामने जाके मत्था टेकते हैं, वही लोग अंबेडकर जी की विचारधारा को भूल जाते हैं, वही लोग अंबेडकर जी की विचारधारा की रक्षा नहीं करते।
8: देश की जनता के साथ क्या खिलवाड़ हो रहा है, मतलब देश में पेट्रोल की कमी, गैस की कमी, बिजनेस बंद हो रहे हैं, फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है, किसानों को खाद नहीं मिलेगी, पूरा का पूरा इंडस्ट्रियल सिस्टम हिलेगा, समय आने वाला है।
1: आफ्टर अ सीरीज ऑफ ह्यूमिलिएटिंग इलेक्टोरल डिफीट्स, मिस्टर राहुल गांधी seems to have lost his sense of political balance. Rahul Gandhi's bizarre remarks about the Indian economy only go on to show that he is living in his own la-la land of lies and delusion.
0: And now let's talk about the political alliance. Was it merely a courtesy visit or a political message wrapped in secrecy? A sudden visit by Congress leaders to BSP chief Mayawati's residence in Lucknow has triggered intense political speculation in Uttar Pradesh. Two Congress leaders, Rajendra Pal Gautam and Barabanki MP Tanuj Punia, reached BSP chief Mayawati's residence in Lucknow hoping to meet her. But sources say that the BSP supremo refused to meet them, forcing the Congress leaders to return empty-handed. Officially, Congress says this was merely a courtesy call to inquire about Mayawati's health. But the timing of this outreach has triggered intense speculation. Why did Congress leaders go without an appointment? Was there a political message meant for Mayawati? And does this indicate unease within the INDIA alliance in Uttar Pradesh? While the questions remain, take a look at the reactions.
3: हम लोग की कल अनुसूचित जाति विभाग की बैठक थी कांग्रेस कार्यालय में, उसमें चर्चा हो रही थी, सामाजिक संगठनों से चर्चा हो रही थी, समाज के सब वरिष्ठ लोग आए थे वहाँ पे, सम्मानित लोग आए थे, तो मीटिंग में ही जो है मायावती जी की स्वास्थ्य के बारे में भी चर्चा हुई, कैसे हैं, क्या हालचाल है, समाज की बड़ी नेता हैं, तो जब वहाँ से निकले हैं तो जस्ट बगल में उनका आवास पड़ता है, आवास पर रोकी गाड़ी राजेंद्रपाल जी ने, ये बताया कि जो है उन्हीं समाज की बड़ी नेता हैं और कई दिनों से टीवी पे नहीं दिखी, तो उनके गेट पे हम लोग गए, गेट पे हम लोगों ने पर्ची लिख कर दी, अवेलेबिलिटी नहीं थी उनकी तो मुलाकात नहीं हो पाई, लेकिन इसमें हम लोग केवल उनसे उनके स्वास्थ्य की जानकारी, उनका हालचाल लेने के लिए व्यक्तिगत रूप से पहुंचे थे, लेकिन अफसोस समय नहीं मिल पाया।
0: Shifting our focus to Karnataka, the Siddaramaiah government has completed 3 years in office. Amid this, the chief minister chair tussle has only intensified in the state. This is the old Karnataka leadership war that is once again threatening to become a challenge for the National Congress leadership in Delhi, which is the Congress High Command. Even as the party has just coronated its chief minister in Kerala, the headache remains the same. In the latest, Karnataka Chief Minister D.K. Shivakumar has issued a statement saying he will go down to Delhi once the High Command calls, and said that it was the top brass that would make the final call. Meanwhile, Siddaramaiah also wants a rejig in the cabinet soon. A big NDTV scoop has revealed that amid the tussle, D.K. Shivakumar's loyalists will be heading to Delhi to mount pressure on the party High Command. Citing the completion of polls, the Deputy Chief Minister's loyalists have argued for the promises made to be fulfilled now. Earlier, during the Keralam Chief Minister's oath, a key huddle took place with regards to the Chief Minister chair tussle. What will happen? But listen in to what D.K. Shivakumar exactly said.
4: I don't want to discuss anything. Whenever our party high command will ask us to go to Delhi, we definitely will go to Delhi, because a lot of things Honorable Chief Minister is also keeping on his cards on the interest of the state. Now we are having a discussion on various issues. Our GBA election is also been announced by the court within 31st August. will make this a trade right.
6: At this point in time, you see, your government has finished 3 years as well. We have been saying how that there still remains to be a confusion. You have been a very important leader from the Congress party who's been very vocal about what is the need at this point in time when we talk about the leadership as such as well. Will we be seeing you? This is the time that you feel the High Command has to put a full stop to the whole of leadership issue that we are seeing here in the state, sir. Is this the time that the Deputy CM needs to be given a chance, sir? What is your thought at this point in time? Because your government has finished 3 years. You have been quite patient about it. You have been the loyal person to be open about your statement as well, sir.
7: See, we have already asked the High Command to get interfere into the situation and solve the problem as early as possible, because see, we want to face the election 2 years after. So we want this to be solved immediately. Whatever the decision High Command tells, we will follow that. But if they had given any promise to our DCM, it should be fulfilled.
10: Mallikarjun Kharge ji and our leader of the opposition, Rahul ji, Sonia.

भारत में मेरी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी काशी, उसको भी अनादि और शाश्वत नगर माना।

0: We at NDTV traveled across the length and breadth of West Bengal. This was the hottest election in all of India. And all of India watched it on NDTV.
1: Why I say this, it could be a big story.
2: Thank you.
0: Stories that no one else had.
3: The memorial they have built is not just for Avicii.
0: Houses still bear the scars of bombs that were thrown inside.
4: Moments
0: that gave competition viral fever.
5: Habib ka gunda hamla kiya.
6: Janta ek gunda raj ko khatam karna cha raha.
7: Bengal bachane ka vote.
8: Fight for justice. Fight for every woman here.
0: Handouts. When it was anything Bengal, you tuned in only to NDTV. This. GOG of elections. NDTV.
9: Size of fish, what taste of fish you like.
10: What's the drama?
0: Full of these people.
11: Kolkata tram.
12: The highest number of voters.
13: Tamil Nadu votes decisive.
14: Afra-Tafrika mahal hai. Udhampur batrao kya gya ha.
15: I've always liked NDTV. It's the most reliable news channel more than anything.
1: Our top focus remains Trisha's death case. It is now snowballing into major political and investigative flashpoint. Madhya Pradesh Chief Minister has met the family of Trisha. Madhya Pradesh government is set to seek a CBI probe into the case. Chief Minister Mohan Yadav has assured the family of justice and will write to the CBI requesting a takeover of the investigation. Meanwhile, Trisha's husband Samarth Singh remains on the run for the 8th straight day. With a 30,000 rupee reward announced for information on his whereabouts and a lookout notice now issued, suspense only lingers on his whereabouts. Meanwhile, the police have called the case a suicide. They say this is based on the only postmortem conducted so far, which is now under the shadow of police negligence. Police has now busted the mother-in-law's claims of Trisha having drugs. Police have clarified that they have not found any drugs. Meanwhile, the cops have written a letter to Trisha's parents and have asked them to take her body from mortuary as it is decomposing. But the suspense only lingers on how did Trisha die. And we also have the reactions coming in from the top cop who's probing the case. Take a look.
16: The belt, the debate is on why that belt, which was used by Trisha to hang herself, or the belt which was used to kill her, as the family alleges, was not submitted with the body when it was going for post-mortem. There was a delay, there was a lapse of the investigating officer. What do you have to say on that?
17: Well, that basically is that belt, of course, it was seized by FSL officers, but that was not sent to hospital before PM. That we can say negligence, and we will conduct a separate inquiry about it. But when we came to know, the belt was sent to hospital and they gave us a report. Means it is not; it will not have any adverse impact on our investigation. Now the thing.
16: What do you think it's required to match the marks on her neck with that belt which was used?
17: Yeah.
16: Hang?
17: Yeah, it is required, and that was done.
16: It doesn't affect the final report.
17: Yeah, yeah.
16: The delay doesn't affect the final report.
17: Delay doesn't affect the final report.
16: तो सेकेंड पोस्टमार्टम की डिमांड लेकर ट्रिशा शर्मा का परिवार अदालत पहुंचा है और सुनवाई पूरी हो चुकी है. अब इंतज़ार है फैसले का. इस बीच अदालती कार्रवाई में क्या कुछ कहा गया ये समझने की कोशिश करते हैं. ट्रिशा के पिता नवनिधि शर्मा जी हमारे साथ हैं. आपने अपना पक्ष रखा लेकिन आप अदालत में पहुँचे इससे ठीक पहले आपको एक पुलिस की तरफ से चिट्ठी भी मिल गई कि एम्स भोपाल में वो सारे इंतज़ाम नहीं हैं जो एक बॉडी को प्रिजर्व करने के लिए होने चाहिए. -4 डिग्री तक इंतज़ाम है, -80 डिग्री तक नहीं है. तो लंबे समय तक बॉडी संभाली नहीं जा सकती. आप इस चिट्ठी को लेकर अदालत पहुंचे और अब सुनवाई खत्म हो चुकी है, फैसले का इंतजार है. आपको लग रहा है रिलीफ मिलेगा और किस तरह की उम्मीद आप अदालत के फैसले से लगा के रखें?
18: मैडम आप देख लीजिए, हम पहले दिन से PM2 की मांग कर रहे थे. ये अपने मकसद में कामयाब हो गए. ये बॉडी को डिकम्पोज करने, मैं पहले दिन से बोल रहा था कि ये बॉडी को डिकम्पोज कर रहे हैं ताकि इनकी जो गलतियाँ हैं वो छुप जाए. आज लिगेचर जो पीएम के टाइम में रिक्वायर्ड रहता है वो 15 तारीख के बाद इनको सबमिट किया गया, क्योंकि 15 तारीख के बाद इसलिए सबमिट किया गया क्योंकि इधर इनकी एंटीसिपेटरी बेल भी थी। ये बहुत जुडिशियल सिस्टम से सब लोगों ने मिल करके एक बहुत बड़ा फ्रेमवर्क है फ्रेम करके इसको काम किया है। ऐसा लगता है कि इसमें कितने अपराधी शामिल हैं जो बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए हैं। आप ये देखिए कि बगैर लिगेचर के पीएम रिपोर्ट उन्होंने रिलीज़ कर दी, प्लस आप देखिए कि एक व्यक्ति को आपने कैसे उस सेम ग्राउंड्स पर एक व्यक्ति को आपने जो है उसका बेल आउट कैंसिल कर दिया, बेल एंटिसिपेटरी बेल, और एक को ग्रांट कर दिया और वो आदमी को आपने खुला छोड़ दिया टीवी पे और सारी
16: डिफेंस रखने के लिए, अपने डिफेंड करने के लिए, और सह अभियुक्त भी हैं वो। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि पुलिस कह रही है कि सबसे सख्त कानून लगाया गया है डाउरी का, दहेज का, बावजूद इसके उनको

0: पेट्री बेल मिल जाती है। हालांकि मीडिया के दबाव के बाद ये भी बात सामने आई कि बेटे को नहीं मिल पाई, जो कि दोनों के लिए होना चाहिए था, लेकिन ये अदालत का फैसला है इसलिए इसे मानना होगा। ऐसे में अब जब आप चिट्ठी आपके हाथ में है और पुलिस ने हाथ खड़े कर दिए हैं, एम्स के एडमिनिस्ट्रेशन ने हाथ खड़े कर दिए हैं कि हम आगे अब इस बॉडी को सही कंडीशन में प्रिजर्व करके नहीं रख पाएंगे, तो परिवार इस वक्त क्या सोच रहा है, क्या फैसला करने वाला है?
1: हम बड़ी मुसीबत में हैं। आप ये देख रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा काला अध्याय है, लिखा जा चुका है जुडिशरी के नाम पर, कि हम पहले दिन से चिल्ला रहे हैं कि बॉडी को, आज भी हमारी गुजारिश है कि बॉडी को किसी तरीके से उन सारी सुविधाओं में एक प्रॉपर जगह पहुंचाया जाए ताकि साक्ष्य सामने आए। लिगेचर के अलावा लड़की की हाइट भी कम रखी गई। लिगेचर तो साफ साफ समझ में आ रहा है कि अगर लिगेचर आ जाता ये डाउरी केस में, अगर आत्महत्या भी अगर पहले क्लियर आ जाती तो इनको अरेस्ट करना पड़ जाता, उसको अरेस्ट बचाने के लिए ये फ्रेमवर्क किया गया, ये साफ साफ समझ में आ रहा है। फिर कल ड्यूरिंग उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हैं, जो वीडियोग्राफी हो रही हैं चारों तरफ से, वो लेडी एक्यूज्ड जो है नंबर वन, वो कह रही है बार बार सबसे कि हम जानते हैं, हम उसको जब जुडिशरी की रिक्वायरमेंट होगी वो प्रस्तुत किया जाएगा। तो जिसके इनाम है, जिस एक्यूज्ड के ऊपर फरार है, वो क्यों नहीं पुलिस उनको, जब वो टेलीविज़न पे कह रही हैं कि वो प्रस्तुत कर सकती हैं, तो क्यों नहीं उनको कस्टडी में लेके पूछा जाता है कि उसको कहाँ हाइड कर रहा है?
0: ये तमाम सवालों के बीच इस वक्त जो बड़ा सवाल है, अब आपके लिए और आपके परिवार के लिए आगे क्या, आप इस फैसले का इंतज़ार हालांकि अभी कर रहे हैं, लेकिन अभी क्या सोच रहे हैं आप, क्या करेंगे अब?
1: बहुत मुश्किल में आ गए हालात। मैं तभी इसके लिए फिर पुरजोर मेरी निवेदन है सभी से कि यहाँ तो हमें न्याय की उम्मीद ख़त्म हो गई है, हमें स्वतंत्र जांच के लिए किसी दूसरे राज्य में एससी की निगरानी में आगे की कार्रवाई हो।
0: और कानून के जानकारों कह रहे हैं कि परिवार को अब हाई कोर्ट जाना चाहिए क्योंकि ये डिस्ट्रिक्ट और सेशंस कोर्ट के जुरिसडिक्शन में भी नहीं आता है।
1: जी, ऐसा है कि ऐसे केसेस में जब जहां पर इतने इन्फ्लुएंस होते हैं तो रेयरस्ट और रेयस्ट केस मान करके सुप्रीम कोर्ट भी संज्ञान लेता है। ये ऐसे कई उदाहरण हैं कि जहाँ पर इतना लंबा प्रोसीजर ना करके सुप्रीम कोर्ट ने अधिकार दिया है पीड़िता को कि उसका हम इस्तेमाल करना चाहेंगे और हम चाहेंगे कि जो हमारा अधिकार है वो हमें मिले।
0: बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो अभी अदालत का फैसला आना भी बाकी है, लेकिन परिवार इस गुहार के साथ पहुंचा है अदालत कि उन्हें सेकंड पोस्टमार्टम करने की इजाज़त दी जाए और इसकी तफ्तीश मध्य प्रदेश भोपाल से बाहर हो।
2: Shifting our focus to political stories, coming in, leader of opposition in the Lok Sabha, Rahul Gandhi, has once again stirred the hornet's nest after his comments from a Rai Bareli rally went viral, where he regarded PM Modi, HM Shah as traitors. During his speech, while thanking Congress workers, Rahul said that when you meet RSS workers, tell them your Prime Minister, Home Minister and organization are traitors and that you have attacked Ambedkar and the Constitution. The remarks have drawn sharp responses from the Bharatiya Janata Party, with BJP President Nitin Naveen leading the charge, calling Rahul Gandhi desperate and despondent. Meanwhile, Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath has said that this only shows the divisive mindset of the Congress Party and shows that how the Congress Party disregards the 145 crore countrymen who have given the mandate to the BJP. Take a look at the reactions.
3: जब ये आरएसएस के कार्यकर्ता आपके सामने आएंगे, नरेंद्र मोदी की बात करेंगे, अमित शाह की बात करेंगे, उनसे आप सामने उनको कहो कि आपका प्रधानमंत्री गद्दार है, आपका होम मिनिस्टर गद्दार है, आपका संगठन गद्दार है, आपने हिंदुस्तान को बेचने का काम किया है, आपने हमारे संगठन, आपने हमारे संविधान पर आक्रमण किया है, आपने अंबेडकर जी पर आक्रमण किया है, आपने वीरापासी जी पर आक्रमण किया है, आपने गांधी जी पर आक्रमण किया है।
4: संविधान पर आक्रमण करता है, जो संविधान को नष्ट करता है उसको आप क्या कहोगे, उसको क्या कहोगे? गद्दार कहोगे। इसीलिए मैंने खुल के कहा है कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह संविधान पर आक्रमण कर रहे हैं।
5: राहुल गांधी जी का आज का बयान बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और कहीं ना कहीं उनकी अराजकतावादी मानसिकता को दिखाता है। मैं मानता हूं कि भारतीय राजनीति में जहां सुचिता, सामाजिकता और कहीं ना कहीं एक दूसरे को सम्मान देने की प्रक्रिया है, उसमें उनका यह बयान बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं मानता हूं कि लगातार हो रही हार निराशा कहीं ना कहीं उनके स्वभाव और उनके चरित्र में दिख रहा है और यही हताशा और निराशा आज उनके इस सब तरह के शब्दों के बयान आ रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं राहुल गांधी जी, आपके पूर्वजों ने इस देश की जमीन और जमीन को हमेशा गिरवी रखने का काम किया, कभी हमारे सैनिकों के मनोबल को बढ़ाने का काम नहीं किया, लेकिन हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस देश की जमीन भी सुरक्षित हुई और देश के लोगों का जमीर भी मजबूत हुआ।
6: राहुल जी पे आरोप तो ये लगाते रहते हैं, जब देश में जब देश के बाहर कोई बात बोलते हैं तो पूरा देश जानता है कि राहुल गांधी दिल का साफ आदमी है। वो दिल में जो बात आती जुबान पे लाते हैं, राजनीति नहीं करते हैं। नंबर तीन, राहुल गांधी जिस प्रकार से बार बार टाइमली वो वार्न करते सरकार को, नोटबंदी हो तब भी, कोविड आ गया तब भी, आर्थिक स्थिति नाजुक दौर पे चल रही है तब भी, लगातार वो नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं।
2: The stage is set for battleground Uttar Pradesh. The state heads to poll next year, but the political temperatures are already soaring. The Congress party is a fresh political attack on the BJP. After its victory of the Congress party in Kerala, it has now made an early pitch for a comeback in Uttar Pradesh, one of the most crucial political backgrounds and battlegrounds in the country. Rahul Gandhi was in Raibareli, where he addressed a Bahujan Swabhiman Sabha. The Congress MP alleged that the constitution is under attack. The leader of opposition in Lok Sabha invoked B.R. Ambedkar and Mahatma Gandhi as he hit out at the Modi government, declaring that those who bow before Ambedkar do not protect his ideology. Rahul Gandhi also warned that the country was heading towards a massive economic crisis that would severely impact Uttar Pradesh's youth, farmers, laborers and small businessmen. The BJP has called him an obstructionist. Take a look at the reactions.
7: इस किताब में एक विचारधारा है, वो अंबेडकर जी के खून में थी, वीरापासी जी के खून में थी, महात्मा गांधी जी के खून में थी, और हर प्रदेश में आपको कोई ना कोई व्यक्ति मिलेगा जो इस किताब के लिए लड़ा था और मरा था। अंबेडकर जी की बात होती है, हाथ जोड़े जाते हैं, मगर जब अंबेडकर जी के संविधान पर आरएसएस खुलकर आक्रमण करता है, फाड़ के फेंक देता है, वही लोग जो अंबेडकर जी की मूर्ति के सामने जाके मत्था टेकते हैं, वही लोग अंबेडकर जी की विचारधारा को भूल जाते हैं, वही लोग अंबेडकर जी की विचारधारा की रक्षा नहीं करते।
8: देश की जनता के साथ क्या खिलवाड़ हो रहा है, मतलब देश में पेट्रोल की कमी, गैस की कमी, बिजनेस बंद हो रहे हैं, फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है, किसानों को खाद नहीं मिलेगी, पूरा का पूरा इंडस्ट्रियल सिस्टम हिलेगा, समय आने वाला है।
9: आफ्टर अ सीरीज ऑफ humiliating electoral defeats, Mr. Rahul Gandhi seems to have lost his sense of political balance. Rahul Gandhi's bizarre remarks about the Indian economy only go on to show that he is living in his own la-la land of lies and delusion.
2: And now let's talk about the political alliance. Was it merely a courtesy visit or a political message wrapped in secrecy? A sudden visit by Congress leaders to BSP chief Mayawati's residence in Lucknow has triggered intense political speculation in Uttar Pradesh. Two Congress leaders, Rajendra Pal Gautam and Barabanki MP Tanuj Punia, reached BSP chief Mayawati's residence in Lucknow hoping to meet her. But sources say that the BSP Supremo refused to meet them, forcing the Congress leaders to return empty-handed. Officially, Congress says this was merely a courtesy call to inquire about Mayawati's health. But the timing of this outreach has triggered intense speculation. Why did Congress leaders go without an appointment? Was there a political message meant for Mayawati? And does this indicate unease within the INDIA alliance in Uttar Pradesh? While the questions remain, take a look at the reactions.
10: हम लोग की कल अनुसूचित जाति विभाग की बैठक थी कांग्रेस कार्यालय में. उसमें चर्चा हो रही थी, सामाजिक संगठनों से चर्चा हो रही थी. समाज के सब वरिष्ठ लोग आए थे वहाँ पे, सम्मानित लोग आए थे. तो मीटिंग में ही जो है मायावती जी की स्वास्थ्य के बारे में भी चर्चा हुई, कैसे हैं, क्या हालचाल है. समाज की बड़ी नेता हैं. तो जब वहाँ से निकले हैं तो जस्ट बगल में उनका आवास पड़ता है. आवास पर रोकी गाड़ी. राजेंद्र पाल जी ने ये बताया कि जो है उन्हें समाज की बड़ी नेता हैं और कई दिनों से टीवी पे नहीं दिखी हैं. तो उनके गेट पे हम लोग गए, गेट पे हम लोगों ने पर्ची लिख कर दी. अवेलेबिलिटी नहीं थी उनकी तो मुलाकात नहीं हो पाई. लेकिन इसमें हम लोग केवल उनसे उनके स्वास्थ्य की जानकारी, उनका हालचाल लेने के लिए व्यक्तिगत रूप से पहुंचे थे. लेकिन अफसोस समय नहीं मिल पाया.
2: Shifting our focus to Karnataka, the Siddaramaiah government has completed 3 years in office. Amid this, the Chief Minister chair tussle has only intensified in the state. This is the old Karnataka leadership war that is once again threatening to become a challenge for the National Congress leadership in Delhi, which is the Congress High Command. Even as the party has just coronated its Chief Minister in Kerala, the headache remains the same. In the latest, Karnataka Chief Minister D.K. Shivakumar has issued a statement saying he will go down to Delhi once the high command calls, and said that it was the top brass that would make the final call. Meanwhile, Siddaramaiah also wants a rejig in the cabinet soon. A big NDTV scoop has revealed that amid the tussle, D.K. Shivakumar's loyalists will be heading to Delhi to mount pressure on the party high command. Citing the completion of polls, the deputy chief minister's loyalists have argued for the promises made to be fulfilled now. Earlier, during the Keralam Chief Minister's oath, a key huddle took place with regards to the Chief Minister chair tussle. What will happen? But listen in to what D.K. Shivakumar exactly said.
11: I don't want to discuss anything. Whenever our party high command will ask us to go to Delhi, we definitely will go to Delhi. Because a lot of things Honorable Chief Minister is also keeping on his cards on the interest of the state. Now we are having a discussion on various issues. Our GBA election is also been announced by the court within 31st August. We'll make this a trade right.
12: At this point in time, you see your government has finished 3 years as well. We have been saying how that there still remains to be a confusion. You have been a very important leader from the Congress party who's been very vocal about what is the need at this point in time when we talk about the leadership as such as well. Will we be seeing you? This is the time that you feel the high command has to put a full stop to the whole of leadership issue that we are seeing here in the state, sir. Is this the time that the deputy CM needs to be given a chance, sir? What is your thought at this point in time? Because your government has finished 3 years. You have been quite patient about it. You have been the loyal person to be open about your statement as well, sir.
13: See, we have already asked the high command to get interfere into the situation and solve the problem as early as possible, because see, we want to face the election 2 years after. So we want this to be solved immediately. Whatever the decision high command tells, we will follow that. But if they had given any promise to our DCM, it should be fulfilled.
14: Malikarjun Kharge ji and our leader of the opposition Rahul ji, Sonia ji has to take a decision in this issue. I hope in this end of this month, this is going to be settled. What will be the result? That is, the high command has to take a decision. We are expecting, but this matter has to be settled as early as possible. Thank you.
2: A viral internet sensation just jumped from social media right into the world of high-stakes global diplomacy. You see, Prime Minister Narendra Modi's latest gift to his Italian counterpart has sent the internet into a frenzy. But this light-hearted moment has also triggered a bizarre accidental rush on the Indian stock market. Here is how a simple 1 rupee candy has taken over global headlines. Take a look.
15: Prime Minister Modi brought us a gift, a very, very good toffee.
16: It's the internet's favorite political friendship, and now it has its very own official flavor. During his bilateral visit to Italy, PM Modi handed Italian Prime Minister Giorgia Meloni a packet of classic Indian Melody chocolates. Meloni quickly took to social media, thanking Modi and calling the treat very, very good.
15: Prime Minister Modi brought us a gift, a very, very good toffee.
16: Launched way back in 1983, the iconic dual-core chocolate candy defined childhood for generations of Indians. Its legendary advertising slogan, questioning why the toffee is so chocolatey, remains embedded in the country's pop culture history.
17: Yeh Melody, itni chocolatey kyun hai?
18: Melody khao, khud jaan jao.
16: The gesture is a direct nod to their viral internet nickname, #Melody. But the internet hype quickly triggered absolute chaos for retail investors back home. Desperate to cash in on the viral moment, eager traders rushed to buy shares of a listed company called Parle Industries, whose stocks, by the way, have surged over 5%. There is just one catch here. The company that actually makes Melody is Parle Products, which is entirely private and not traded on the stock market. Parle Industries just happens to share the famous name. While the stock market mix-up left some investors with a bitter taste, the iconic chocolate has never been more famous. Bureau Report, NDTV World.
2: Now, after this video of Prime Minister Narendra Modi and Italian counterpart Giorgia Meloni went viral, a political showdown over the video has erupted. The video from Rome shows an informal meeting between the two leaders and PM Modi gifting Melody a packet of Melody. But the politics over it escalates back home, with Congress leader Rahul Gandhi questioning why the Prime Minister is busy in making reels instead of helping the economy of the country. Take a look.
15: Prime Minister Modi brought us a gift, a very, very good toffee.
18: Melody.
15: Prime Minister Modi brought us a gift, a very, very good toffee.
18: Melody.
3: Pata nahi aapne aaj Modi ji ka video dekha nahi dekha dekha? WhatsApp University walon ne dekha? Wo Italy ki rashtrapati Meloni hai, unko Narendra Modi ji toffee khila rahe hain. रील बनाई है हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री इटली के प्रधानमंत्री को मेलोनी को मेलोनी टॉफी दिए हैं
19: तो हमें कहते हैं वर्क फ्रॉम होम और खुद करते हैं रोड शो खुद जाते हैं 8,500 करोड़ के हवाई जहाज में विदेश और सुना कोई मेलोडी की टॉफी भी किसी को गिफ्ट करने गए पार्ले मेलोडी अभी देख रहा था हंसी मत सच में हुआ है मजाक नहीं कर रहा हमें भी शुरू में लगता था ये मजाक हो रहा है लेकिन ये सच में हो रहा है
20: प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज डन अ ग्रेट डिप्लोमेटिक एफर्ट इन द कंट्रीज ही हैज विजिटेड वी हैव अचीव्ड ग्रेट थिंग्स फॉर इंडिया फॉर इंस्टेंस द एनहांसमेंट ऑफ आवर स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स विद यूएई 30 मिलियन बैरल्स विल बी केप्ट एंड ऑल्सो सॉफ्ट टच हैज बीन गिवन बाय द एक्सचेंज ऑफ स्वीट्स विच इज अ स्वीट जेस्चर इन डिप्लोमेसी इट रिफ्लेक्ट्स द पर्सनल बॉन्डिंग इन केमिस्ट्री between Italian and Indian Prime Minister and Italian and Indian people. But why is Rahul Gandhi having a bitter taste with this sweet gesture?
2: On that note, we're slipping into a very short break. Don't go anywhere.
21: The front lines of Kargil. The fury of Operation Sindhu.
22: So many attacks.
21: The chaos and cries of disaster zones to fighter jet cockpits and the world's most defining interviews.
22: It's incredible.
21: He has seen history break live, unfiltered. 20,000 hours of live broadcasting.
22: Welcome to Left, Right and Center.
21: Hard facts.
0: decisions.
1: War struck country.
0: Hard questions.
1: In the Ukraine.
0: 30 years of trust.
4: In the Kargil area.
1: North Ukraine.
4: In France. In Italy.
1: At Srinagar.
4: INSB France.
1: Vishnu Shom for NDTV.
0: Vishnu Shom. Only on NDTV.
23: Higher end, check the audio. Higher end, check the audio.
24: Let's do it. Let's do it. Let's start.
25: Big news that we're breaking first here on NDTV.
26: We know for sure that they have, you know.
2: Salman Khan's confrontation with paparazzi outside a Mumbai hospital has reignited the debate around celebrity privacy and media boundaries. The actor, who had reportedly gone there to visit someone, was surrounded and mobbed by photographers asking about Matrubhumi, his upcoming movie. Viral videos captured his angry reaction, followed by a series of sharp social media posts. Take a look at this report.
27: This wasn't a film event, not an airport spotting, not even a celebrity dinner outing. This happened outside a hospital. And that changes the conversation. Salman Khan had reportedly gone to Mumbai's PD Hinduja Hospital to visit someone. But what followed quickly turned chaotic. Viral videos show photographers crowding outside, calling out his name and demanding updates on Matrubhumi. The cameras kept rolling, the questions kept coming, and Salman clearly wasn't pleased. A visibly angry Salman questioned the photographer's behavior. As he stepped out, the actor lashed out at the photographers. He made hand gestures, questioned their behavior, and appeared visibly upset at being followed inside what may consider a deeply personal space. The videos have now gone viral. For some, this was just another celebrity paparazzi clash. But for others, the location changed everything. The hospital is often where families deal with illness, fear, and private moments. So should hospitals become content zones too? Or are public figures expected to remain accessible no matter the circumstance? Later that night, Salman took the matter to social media. In one post, he reminded photographers that he had always supported the press and respected their livelihood. But he also accused some of crossing the line. He wrote, and I quote, "If I see any press at a hospital enjoying my pain," and then came the line that is now being widely shared online, and I quote, "Matrubhumi picture picture important hai ya life?" He also questioned whether anyone would want cameras intruding during their own difficult moments. Salman ended his posts with a warning in trademark Bhaijaan style. 60 saal ka ho gaya hoon, lekin ladna nahi bhula. The videos are viral, the opinions are divided. But the larger question remains, when does celebrity coverage become intrusion? And where should the line be drawn? Especially outside a hospital. Bureau Report, NDTV.
2: Halting here for a quick break, but don't go anywhere as more news and updates is lined up on the other side, so keep watching NDTV.

0: We at NDTV traveled across the length and breadth of West Bengal. This was the hottest election in all of India. And all of India watched it on NDTV.
1: Why I say this, it could be a big story.
2: Thank you.
0: Stories that no one else had.
3: The memorial they have built is not just for Avicii.
0: Houses still bear the scars of bombs that were thrown inside.
4: Moments
0: that gave competition viral fever.
5: Habib ka gunda hamla kiya.
6: Janta ek gunda raj ko khatam karna cha raha.
7: Bengal bachane ka vote.
8: Fight for justice. Fight for every woman here.
0: Handouts. When it was anything Bengal, you tuned in only to NDTV. This. GOG selections. NDTV.
9: Size of fish, what taste of fish you like.
10: What's the drama?
0: Full of these people.
11: Kolkata tram.
12: The highest number of voters.
13: Tamil Nadu votes decisive.
14: South Africa mahal hai. Udaipur batlav kiya gaya
15: hai. I've always liked NDTV. It's the most reliable news channel more than anything.
16: TVK headquarters here.
17: Lot of thanks for NDTV. Congratulations to NDTV.
18: Thank the team for their incredible coverage of the Tamil Nadu election so far.
19: Fast moving, but still relaxed. Informative, but still unbiased.
15: So I really love the channel. I saw Shiv sir and I was really excited to meet him and tell hi. So I'm really happy I met you sir. Thank you so much.
20: Happy meeting NDTV team here.
21: Thanks for NDTV.
22: Padmija Joshi.
23: Shreya Shide.
24: This is Shreya Ghosh.
25: Rakhandeep Chaudhary.
26: Manoj Yalowiwal.
27: Deepak Bopanav.
28: This is Vikte.
29: Tanushka Datta.
30: Sam Daniel.
31: Vika Ramaswamy.
32: Ritu Rajpurohit.
33: Shiv Arur.
34: To all our viewers who've joined us, thank you very much for spending your time, for trusting NDTV.
35: The front lines of Kargil. The fury of Operation Sindhu.
36: So many attacks.
35: The chaos and cries of disaster zones to fighter jet cockpits and the world's most defining interviews.
36: It's incredible.
35: He has seen history break.
1: Our top focus remains Twisha's death case. It is now snowballing into major political and investigative flashpoint. Madhya Pradesh Chief Minister has met the family of Twisha. Madhya Pradesh government is set to seek a CBI probe into the case. Chief Minister Mohan Yadav has assured the family of justice and will write to the CBI requesting a takeover of the investigation. Meanwhile, Twisha's husband Samarth Singh remains on the run for the 8th straight day. With a 30,000 rupee reward announced for information on his whereabouts and a lookout notice now issued, suspense only lingers on his whereabouts. Meanwhile, the police have called the case a suicide. They say this is based on the only postmortem conducted so far, which is now under the shadow of police negligence. Police has now busted the mother-in-law's claims of Twisha having drugs. Police have clarified that they have not found any drugs. Meanwhile, the cops have written a letter to Twisha's parents and have asked them to take her body from mortuary as it is decomposing. But the suspense only lingers on how did Twisha die. And we also have the reactions coming in from the top cop who's probing the case. Take a look.
37: The belt. The debate is on why that belt, which was used by Twisha to hang herself, or the belt which was used to kill her, as the family alleges, was not submitted with the body when it was going for post-mortem. There was a delay, there was a lapse of the investigating officer. What do you have to say on that?
38: Well, that basically is that belt, of course, it was seized by FSL officers, but that was not sent to hospital before PM. That we can say negligence, and we will conduct a separate inquiry about it. But when we came to know, the belt was sent to hospital and they gave us a report. Means it is not; it will not have any adverse impact on our investigation. Now the thing.
37: Do you think it's required to match the marks on her neck with that belt which was used to hang?
38: Yeah, it is required, and that was done.
37: It doesn't affect the final report.
38: Yeah, yeah.
37: The delay doesn't affect the final report.
38: Delay doesn't affect the final report.
37: तो सेकेंड पोस्टमार्टम की डिमांड लेकर ट्विशा शर्मा का परिवार अदालत पहुंचा है और सुनवाई पूरी हो चुकी है, अब इंतजार है फैसले का। इस बीच अदालती कार्रवाई में क्या कुछ कहा गया ये समझने की कोशिश करते हैं। ट्विशा के पिता नवनिधि शर्मा जी हमारे साथ हैं, आपने अपना पक्ष रखा लेकिन आप अदालत में पहुंचे इससे ठीक पहले आपको एक पुलिस की तरफ से चिट्ठी भी मिल गई कि एम्स भोपाल में वो सारे इंतजाम नहीं हैं जो एक बॉडी को प्रिजर्व करने के लिए होने चाहिए। -4 डिग्री तक इंतजाम है, -80 डिग्री तक नहीं है, तो लंबे समय तक बॉडी संभाली नहीं जा सकती। आप इस चिट्ठी को लेकर अदालत पहुंचे और अब सुनवाई खत्म हो चुकी है, फैसले का इंतजार है, आपको लग रहा है रिलीफ मिलेगा और किस तरह का किस तरह की उम्मीद आप अदालत के फैसले से लगा के रखें?
2: मैडम आप देख लीजिए, हम पहले दिन से PM2 की मांग कर रहे थे, ये अपने मकसद में कामयाब हो गए। ये बॉडी को डिकम्पोज करने, मैं पहले दिन से बोल रहा था कि ये बॉडी को डिकम्पोज कर रहे हैं ताकि इनकी जो गलतियाँ हैं वो छुप जाएँ। आज लिगेचर जो PM के टाइम में रिक्वायर्ड रहता है वो 15 तारीख के बाद इनको सबमिट किया गया, क्योंकि 15 तारीख के बाद इसलिए सबमिट किया गया क्योंकि इधर इनकी एंटीसिपेटरी बेल भी थी। ये बहुत जुडिशियल सिस्टम से सब लोगों ने मिलकर के एक बहुत बड़ा फ्रेमवर्क है, फ्रेम करके इसको काम किया है। ऐसा लगता है कि इसमें कितने अपराधी शामिल हैं जो बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए हैं। आप ये देखिए कि बगैर लिगेचर के PM रिपोर्ट उन्होंने रिलीज़ कर दी, प्लस आप देखिए कि एक व्यक्ति को आपने कैसे उस सेम ग्राउंड्स पर एक व्यक्ति को आपने जो है उसका बेल आउट कैंसिल कर दिया, बेल एंटिसिपेटरी बेल, और एक को ग्रांट कर दिया और वो आदमी को आपने खुला छोड़ दिया TV पे और
37: अपना
2: सारी
37: डिफेंस रखने के लिए, अपने डिफेंड करने के लिए, और सह अभियुक्त भी हैं वो। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि पुलिस कह रही है कि सबसे सख्त कानून लगाया गया है डाउरी का, दहेज का, बावजूद इसके उनको एंटिसिपेटरी बेल मिल जाती है। हालांकि मीडिया के दबाव के बाद ये भी बात सामने आई कि बेटे को नहीं मिल पाई जो कि दोनों के लिए होना चाहिए था, लेकिन ये अदालत का फैसला है इसीलिए इसे मानना होगा। ऐसे में अब जब आप चिट्ठी आपके हाथ में है और पुलिस ने हाथ खड़े कर दिए हैं, एम्स के एडमिनिस्ट्रेशन ने हाथ

0: खड़े कर दिए हैं कि हम आगे अब इस बॉडी को सही कंडीशन में प्रिजर्व करके नहीं रख पाएंगे, तो परिवार इस वक्त क्या सोच रहा है, क्या फैसला करने वाला है?
1: हम बड़ी मुसीबत में हैं। आप ये देख रहे हैं, ये बहुत बड़ा काला अध्याय है, लिखा जा चुका है जुडिशरी के नाम पर, कि हम पहले दिन से चिल्ला रहे हैं कि बॉडी को, आज भी हमारी गुजारिश है कि बॉडी को किसी तरीके से उन सारी सुविधाओं में एक प्रॉपर जगह पहुंचाया जाए ताकि साक्ष्य सामने आए। लिगेचर के अलावा लड़की की हाइट भी कम रखी गई। लिगेचर तो साफ साफ समझ में आ रहा है कि अगर लिगेचर आ जाता ये डाउरी केस में, अगर आत्महत्या भी अगर पहले क्लियर आ जाती तो इनको अरेस्ट करना पड़ जाता, उसको अरेस्ट बचाने के लिए ये फ्रेमवर्क किया गया, ये साफ साफ समझ में आ रहा है। फिर कल ड्यूरिंग उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हैं, जो वीडियोग्राफी हो रही हैं चारों तरफ से, वो लेडी एक्यूज्ड जो है नंबर वन, वो कह रही है बार बार सबसे कि हम जानते हैं, हम उसको जब जुडिशरी की रिक्वायरमेंट होगी वो प्रस्तुत किया जाएगा। तो जिसके इनाम है, जिस एक्यूज्ड के ऊपर फरार है, वो क्यों नहीं पुलिस उनको, जब वो टेलीविज़न पे कह रही हैं कि वो प्रस्तुत कर सकती हैं, तो क्यों नहीं उनको कस्टडी में लेके पूछा जाता है कि उसको कहाँ हाइड कर रखा
0: है? तमाम सवालों के बीच इस वक्त जो बड़ा सवाल है, अब आपके लिए और आपके परिवार के लिए आगे क्या, आप इस फैसले का इंतज़ार हालांकि अभी कर रहे हैं, लेकिन अभी क्या सोच रहे हैं आप, क्या करेंगे अब?
1: बहुत मुश्किल में आ गए हालात। मैं तभी इसके लिए फिर पुरजोर मेरी निवेदन है सभी से कि यहाँ तो हमें न्याय की उम्मीद ख़त्म हो गई है, हमें स्वतंत्र जांच के लिए किसी दूसरे राज्य में एससी की निगरानी में आगे की कार्रवाई हो।
0: और कानून के जानकारों कह रहे हैं कि परिवार को अब हाई कोर्ट जाना चाहिए क्योंकि ये डिस्ट्रिक्ट और सेशंस कोर्ट के जुरिसडिक्शन में भी नहीं आता है।
1: जी, ऐसा है कि ऐसे केसेस में जब जहां पर इतने इन्फ्लुएंस होते हैं तो रेयरस्ट और रेयस्ट केस मान करके सुप्रीम कोर्ट भी संज्ञान लेता है। ये ऐसे कई उदाहरण हैं कि जहाँ पर इतना लंबा प्रोसीजर ना करके सुप्रीम कोर्ट ने अधिकार दिया है पीड़िता को कि उसका हम इस्तेमाल करना चाहेंगे और हम चाहेंगे कि जो हमारा अधिकार है वो हमें मिले।
0: बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो अभी अदालत का फैसला आना अभी बाकी है, लेकिन परिवार इस गुहार के साथ पहुंचा है अदालत कि उन्हें सेकंड पोस्टमार्टम करने की इजाज़त दी जाए और इसकी तफ्तीश मध्य प्रदेश भोपाल से बाहर हो।
2: Shifting our focus to political stories, coming in, leader of opposition in the Lok Sabha, Rahul Gandhi, has once again stirred the hornet's nest after his comments from a Rai Bareli rally went viral, where he regarded PM Modi, HM Shah as traitors. During his speech, while thanking Congress workers, Rahul said that when you meet RSS workers, tell them your Prime Minister, Home Minister and organization are traitors and that you have attacked Ambedkar and the Constitution. The remarks have drawn sharp responses from the Bharatiya Janata Party, with BJP President Nitin Naveen leading the charge, calling Rahul Gandhi desperate and despondent. Meanwhile, Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath has said that this only shows the divisive mindset of the Congress Party and shows that how the Congress Party disregards the 145 crore countrymen who have given the mandate to the BJP. Take a look at the reactions.
3: जब ये आरएसएस के कार्यकर्ता आपके सामने आएंगे, नरेंद्र मोदी की बात करेंगे, अमित शाह की बात करेंगे, उनसे आप सामने उनको कहो कि आपका प्रधानमंत्री गद्दार है, आपका होम मिनिस्टर गद्दार है, आपका संगठन गद्दार है, आपने हिंदुस्तान को बेचने का काम किया है, आपने हमारे संगठन, आपने हमारे संविधान पर आक्रमण किया है, आपने अंबेडकर जी पर आक्रमण किया है, आपने वीरापासी जी पर आक्रमण किया है, आपने गांधी जी पर आक्रमण किया है।
4: संविधान पर आक्रमण करता है, जो संविधान को नष्ट करता है उसको आप क्या कहोगे, उसको क्या कहोगे? गद्दार कहोगे। इसीलिए मैंने खुल के कहा है कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह संविधान पर आक्रमण कर रहे हैं।
5: राहुल गांधी जी का आज का बयान बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और कहीं ना कहीं उनकी अराजकतावादी मानसिकता को दिखाता है। मैं मानता हूं कि भारतीय राजनीति में जहां सुचिता, सामाजिकता और कहीं ना कहीं एक दूसरे को सम्मान देने की प्रक्रिया है, उसमें उनका यह बयान बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं मानता हूं कि लगातार हो रही हार, निराशा कहीं ना कहीं उनके स्वभाव और उनके चरित्र में दिख रहा है और यही हताशा और निराशा आज उनके इस सब तरह के शब्दों के बयान आ रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं राहुल गांधी जी, आपके पूर्वजों ने इस देश की जमीन और जमीर को हमेशा गिरवी रखने का काम किया।

0: कभी हमारे सैनिकों के मनोबल को बढ़ाने का काम नहीं किया, लेकिन हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस देश की जमीन भी सुरक्षित हुई और देश के लोगों का जमीर भी मजबूत हुआ।
1: जाऊ जी पे आरोप तो ये लगाते रहते हैं, जब देश में जब देश के बाहर कोई बात बोलते हैं तो पूरा देश जानता है कि राहुल गांधी दिल का साफ आदमी है। वो दिल में जो बात आती जुबान पे लाते हैं, राजनीति नहीं करते हैं। नंबर तीन, राहुल गांधी जिस प्रकार से बार बार टाइमली वो वार्न करते सरकार को, नोटबंदी हो तब भी, कोविड आ गया तब भी, आर्थिक स्थिति नाजुक दौर पे चल रही है तब भी, लगातार वो नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं।
2: The stage is set for battleground Uttar Pradesh. The state heads to poll next year, but the political temperatures are already soaring. The Congress party is a fresh political attack on the BJP. After its victory of the Congress party in Kerala, it has now made an early pitch for a comeback in Uttar Pradesh, one of the most crucial political backgrounds and battlegrounds in the country. Rahul Gandhi was in Raibareli, where he addressed a Bahujan Swabhiman Sabha. The Congress MP alleged that the constitution is under attack. The leader of opposition in Lok Sabha invoked B.R. Ambedkar and Mahatma Gandhi as he hit out at the Modi government, declaring that those who bow before Ambedkar do not protect his ideology. Rahul Gandhi also warned that the country was heading towards a massive economic crisis that would severely impact Uttar Pradesh's youth, farmers, laborers and small businessmen. The BJP has called him an obstructionist. Take a look at the reactions.
3: इस किताब में एक विचारधारा है, वो अंबेडकर जी के खून में थी, वीरापासी जी के खून में थी, महात्मा गांधी जी के खून में थी, और हर प्रदेश में आपको कोई ना कोई व्यक्ति मिलेगा जो इस किताब के लिए लड़ा था और मरा था। अंबेडकर जी की बात होती है, हाथ जोड़े जाते हैं, मगर जब अंबेडकर जी के संविधान पर आरएसएस खुलकर आक्रमण करता है, फाड़ के फेंक देता है, वही लोग जो अंबेडकर जी की मूर्ति के सामने जाके मत्था टेकते हैं, वही लोग अंबेडकर जी की विचारधारा को भूल जाते हैं, वही लोग अंबेडकर जी की विचारधारा की रक्षा नहीं करते।
4: देश की जनता के साथ क्या खिलवाड़ हो रहा है, मतलब देश में पेट्रोल की कमी, गैस की कमी, बिजनेस बंद हो रहे हैं, फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है, किसानों को खाद नहीं मिलेगी, पूरा का पूरा इंडस्ट्रियल सिस्टम हिलेगा, समय आने वाला है।
5: आफ्टर अ सीरीज ऑफ humiliating electoral defeats, Mr. Rahul Gandhi seems to have lost his sense of political balance. Rahul Gandhi's bizarre remarks about the Indian economy only go on to show that he is living in his own la-la land of lies and delusion.
2: And now let's talk about the political alliance. Was it merely a courtesy visit or a political message wrapped in secrecy? A sudden visit by Congress leaders to BSP chief Mayawati's residence in Lucknow has triggered intense political speculation in Uttar Pradesh. Two Congress leaders, Rajendra Pal Gautam and Barabanki MP Tanuj Punia, reached BSP chief Mayawati's residence in Lucknow hoping to meet her. But sources say that the BSP Supremo refused to meet them, forcing the Congress leaders to return empty-handed. Officially, Congress says this was merely a courtesy call to inquire about Mayawati's health. But the timing of this outreach has triggered intense speculation. Why did Congress leaders go without an appointment? Was there a political message meant for Mayawati? And does this indicate unease within the INDIA alliance in Uttar Pradesh?